एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। इस समय सुबह के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

आस्था के स्वर कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं देश वंदना से। लीजिए सुनिए सोहनलाल द्विवेदी की रचना संवेद स्वर में।

ब्रह्मानंद रचित भजन अभी आपने सुना अनूप जलोटा की आवाज में। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भजन, स्वर है चित्रा सिंह का।

0: इस भजन के साथ ही अब आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आस्था के स्वर। ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:30 हुए हैं। वक्त है चिंतन का। चिंतन में सुनिए अशोक वानहरे के विचार। वाचक स्वर रवि कुमार सोनी का।
1: जहाँ जीवन है वहाँ समाज है, और जहाँ समाज है वहाँ नेतृत्व है। नेतृत्व सिर्फ मानवीय समाज में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी दिखाई देता है। संभवतः जब से समाज है तभी से नेतृत्व ही अस्तित्व में है। समाज का नेतृत्व करने वाले को नेता कहा जाता है। नेता वो व्यक्ति होता है जो आगे रहता है, मान्य सुझाव देता है, पथ प्रदर्शन करता है, दूसरों के लिए आदर्श के रूप में कार्य करता है, राय देता है या आदेश देता है, और उसके आदेशों का पालन समाज द्वारा किया जाता है। कुशल नेता ही समाज के उत्थान का कारण बनता है, और अगर अक्षमता हो तो वो समाज के पतन का कारण भी बनता है। नेतृत्व में समाज को बदलने की ताकत होती है। अच्छा नेता समाज का पथ प्रदर्शक बनकर समाज में व्याप्त बुराइयों, रूढ़ियों, भ्रांतियों आदि को दूर कर स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। नेतृत्व व्यक्तियों को प्रोत्साहित या निर्देशित करने वाली योग्यता है जो व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। एक अच्छे नेता में अधिक संकल्प शक्ति अर्थात विल पावर होना चाहिए। नेता को आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है निर्णय लेने की क्षमता। जिन लोगों में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं वे दूसरों के व्यवहार को जल्दी प्रभावित करते हैं। नेता को परिवर्तनशील होना चाहिए अर्थात हर नई परिस्थिति में अनुकूलन कर सकने की योग्यता उसे होनी चाहिए। स्वयं के विचारों के साथ समाज की विचारधारा को बदलने की योग्यता भी होनी चाहिए। ऐसा करने से समाज को एक नई दिशा भी मिलती है और नए तरीके से मोड़ा भी जा सकता है। प्राचीन काल से वर्तमान तक प्रत्येक कालखंड में किसी न किसी व्यक्ति का प्रभुत्व रहा है। कुछ ने समाज को सुधारा व सफल मार्गदर्शक भी बने। महावीर, पैगंबर, बुद्ध आदि इसी श्रेणी में आते हैं। लोगों ने इन्हें ईश्वर के दूत या ईश्वर के रूप में ही स्वीकार किया। कुछ लोगों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि। वर्तमान समाज को ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत है जो प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था रखता है, मानवीय संवेदनाओं को समझता है, उन्हें समझने के साथ साथ वो स्वयं भी उनसे ओतप्रोत होता है, समाज में फैली हुई आर्थिक सामाजिक विषमता को दूर करने का जज्बा रखता है, देश को विश्व पटल पर स्थायी पहचान दिलाने की ललक रखता है, सभी से समान व्यवहार करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति आज की जरूरत है। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।
0: नेतृत्व, इस विषय पर अभी आपने सुना आज का चिंतन। विचार अशोक वानहरे के और वाचक स्वर था रवि कुमार सोनी का।
2: ये है निमाड़।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधी तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा, और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

0: आकाशवाणी खंडवा से अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग, स्वर ए हरिहरन का था। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से लीजिए सुनिए कृषि चर्चा, विषय है वर्मी कंपोस्ट खाद, वाचक स्वर स्मिता परोले का।
1: भाई बहनोहणी राम राम। आज की कृषि चर्चा को विषय छे वर्मी कंपोस्ट खाद आज की आवश्यकता, वाचक स्वर स्मिता बरोले। भाई बहनोहणी, किसान भाई खेती करीना लाभ लेज न दिन रात कृषि में कार्य भी करज। कृषि में फसल उत्पादन का लेना खाद को उपयोग महत्वपूर्ण छे। बिना खाद पानी दिए फसल न को उत्पादन अच्छो नहीं होतो है। फसल न का लेना किसान भाई तरह तरह की खाद को उपयोग करज। पर किसान भाई बहनोहणी, जैविक खाद एक ऐसी छे जेका सी जहाँ मिट्टी की गुणवत्ता तो सुधरज वहां पर्यावरण का लेना भी लाभदायक रहेज, न मनुष्य का स्वास्थ्य का लेना भी लाभदायक छे। न वर्मी कंपोस्ट खाद एमसी एक छे। वर्मी कंपोस्ट खाद का अनेक लाभ छे। सातज एम जो केचुआ छे वो कृषक न का मित्र न भूमि की आत कहो जाए। न ये सेंद्रीय पदार्थ ह्यूमस न मिट्टी ख एक सार करी का जमीन का अंदर अन्य परत न फैलता जाए। एकासी जमीन पोली हुई जाए, न हवा को आवागमन बढ़ी जाए। साथज एक जल धारण क्षमता भी बढ़ज। न केचुआ का पेट में जो रासायनिक क्रिया व सूक्ष्म जीवाणु की क्रिया होएज उकासी भूमि में पाए जाने वाला नत्रजन स्फूर पोटास व अन्य सूक्ष्म तत्व न की उपलब्धता बढ़ज। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं आती है, मक्खी न मच्छर भी नहीं बढ़ता है। जेकासी वातावरण प्रदूषित नहीं होते है। न तापमान भी नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहेज। वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 माह का अंदर किसान भाई तैयार करी सकज। जेमा 2.5 से 3% तक नत्रजन, 1.5 से 2% तक स्फूर, न 1.5 से 2% तक पोटास पायो जाए। वर्मी कंपोस्ट तैयार करना का लेना किसान भाई ये बात को ध्यान रखा। एक लेना वर्मी कंपोस्ट बनाना का लिए छायादार ऊंचा स्थान पर जमीन की सतह से ऊपर मिट्टी डाली कर बेड बनाया जाए, जेका सी सूर्य की किरण गर्मी बरसात से ओखा बचाया जा सका। बेड में सबसे नीचे 1 से 2 इंच बालू रेतीली मिट्टी पिछाई देनु चाहिए। एका ऊपर सोयाबीन को भूसो गेहूं को भूसो एक ही परत चढ़ाई न पानी छिड़की कर नरम करी देनु चाहिए। एका बाद 8 से 10 इंच कार्बनिक पदार्थ जसो की गोबर की परत बची हुई साग सब्जी आदि की परत लगाई सका। एका बाद 1000 केचुआ प्रति वर्ग मीटर का हिसाब से उम्र छोड़ी देवा। न बेड का ऊपर ताजो गोबर को प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ताजा गोबर को तापमान अधिक होने का कारण केचुआ मरी सकज। बेड में नमी बनावना के लिए प्रतिदिन पानी को छिड़काव करना चाहिए। गर्मी में 2 से 3 दिन बाद न सर्दी में 1 बार पानी को छिड़काव करता रहा। बेड की बोरी पत्ता से ढकी कर रखनी चाहिए क्योंकि केचुआ अंधेरा में काम करे। केचुआ ऊपर से खाता हुआ नीचे की तरफ जाए अरु खाद में ओखा परिवर्तित करी दे। 2 से 3 माह में वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हुई जाए। एकासी 1000 केचुआ प्रतिदिन 1 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट तैयार करे। वर्मी कंपोस्ट खाद बनावना का बाद एम पानी छिड़कनो बंद करी देवा। न कंपोस्ट ख एकत्रित करी लेवा, न केचुआ नमी में रहनु पसंद करे। तो एका लेना जब भी कंपोस्ट सूखी जाए तो केचुआ नीचे की सतह पर चली जाए, अरु जब कंपोस्टिक खाद पदार्थ खाई जाए तो केचुआ ऊपर आकर अपनो काम प्रारंभ करी दे। तो किसान भाई ई विधि सी वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करी सकज, मिट्टी ख उपजाऊ बढ़ाई सकज।

0: तो किसान भाई वर्मी कंपोस्ट खाद को उपयोग करी सके। तो भाई बहन नोहनी ये तो थी आज की कृषि चर्चा। राम राम।
1: वर्मी कंपोस्ट खाद आज की आवश्यकता, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज की कृषि चर्चा। वाचक स्वर स्मिता बरोले का था।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। सजन रेडियो
3: बजाइयो बजाइयो बजाइयो सारा। जी हाँ साथियों, तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।

इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम हमारे श्रोता में सुनिएगा ग्राम शिवना की हमारे किसान श्रोता किशन मालाकार से आरती शर्मा की बातचीत। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल सुबह 7:20 पर। आठ बजकर 15 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का और सुबह 8:30 पर प्रसारित करेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। सुबह 10 हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 पर बाल श्रोताओं के लिए होगा उनका कार्यक्रम बाल जगत। इसमें बच्चे सुन सकते हैं वरिष्ठ योग गुरु करमचंद कौशिक की वार्ता योग से आरोग्य की सीख।

साथ ही इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जिज्ञासा क्रम में बच्चों के लिए होगी जानकारी, बारिश में बिजली चमकने और गरजने की आवाज़ कैसे आती है, और मनोरंजन के लिए गीत।

सुबह 10:40 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित भीमसेन जोशी का शास्त्रीय गायन, राग होगा सुर मल्हार। सुबह 9 से 10 तक और दिन में 11 से शाम 5:30 तक राष्ट्रीय विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। युवा श्रोताओं के लिए होगा उनका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, प्रसारण समय शाम 6:00। आज का आकर्षण होगा क्रम हेलो फ्रेंड्स। शाम 5:30 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का और शाम 6:30 पर फिल्म संगीत का।

दी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। और शाम 7:21 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संदर्भ में।

यह है निमाड की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर में पेश है समाचार पत्रों की सुर्खियां। शहर के करदाताओं के लिए निगम द्वारा 10 जुलाई को विशेष राजस्व वसूली शिविर लगाया जाएगा। इसमें संपत्ति कर और जल कर की एडवांस राशि जमा करने वाले करदाताओं को विशेष छूट दी जाएगी। खंडवा डुलहार पंधाना रोड पर कीचड़ के कारण चलना मुश्किल हो गया है। जगह जगह पानी भरा होने के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। रोड निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने मई 2027 की डेडलाइन तय की है।

मांधाता विधायक नारायण पटेल शनिवार को कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और एसपी आगम जैन के साथ संत सिंगाजी धाम पहुंचे। मंदिर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करके निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। विकासखंड छेगांव माखन के समस्त प्राध्यापक नोडल अधिकारी का एक दिनी उल्लास नवभारत साक्षरता प्रशिक्षण शनिवार को आयोजित हुआ। शहर में 11 से 13 जुलाई तक रामानंदचार्य संप्रदाय की ओर से 3 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ होगा। आयोजन नवकार नगर के पास किया जाएगा। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में शनिवार को जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 5 रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का लोकार्पण कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आगम जैन और एसडीएम पंकज वर्मा भी मौजूद रहे। और एक नजर खेल समाचारों पर। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागानंदन ने लगातार 3 बाजी जीतकर ग्रैंड चेस टूर के रैपिड राउंड में शानदार वापसी की। वे अलीरेजा फिरोजा के साथ संयुक्त टॉप पर हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। और अब एक नजर मौसम के हाल पर। शहर में मानसून अब पूरी रफ्तार में नजर आ रहा है। शहर सहित जिले में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विशेषज्ञ अरुण शर्मा के अनुसार जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

कल दिन का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रहा। समाचारों का संकलन किया सोनाली दशोरे ने।

आकाशवाणी खंडवा से लीजिए अब सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हमारे श्रोता। आज इस कार्यक्रम में सुनिए ग्राम शिवना की किसान श्रोता किशन मालाकार से आरती शर्मा की बातचीत।

0: हमारे श्रोता कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं श्री किशन मालाकार, ग्राम शिवना से हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: किशन जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम जी, मैं किसान भी हूँ और मैं टेलर का काम करता हूँ।
0: जी, किसान भी हैं और टेलर का काम, तो ये तो इस वक्त खेती किसानी संबंधी कार्य तो बड़े ज़ोरों पे होंगे, क्योंकि मौसम जो है वो बदल रहा है, बोवनी का मौसम शुरू हो गया है।
1: हाँ मैडम जी, बोवनी कर दी है
0: जी। रेडियो कब से सुन रहे हैं?
1: जी मैं रेडियो 1990 से सुन रहा हूँ मैडम जी।
0: 1990 से
1: जी।
0: आकाशवाणी खंडवा के बिल्कुल पहले दिन से जुड़े हैं
1: जी।
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: सभी सुनते हैं, उसमें निमाड़ी लोकगीत भी, खेती गृहस्थी भी, युववाणी भी, आस्था के स्वर भी।
0: कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जो आपको बेहद पसंद आते हैं, मतलब ऐसा कि उस समय आप बिल्कुल एकदम रेडियो सेट के करीब आ जाते हैं?
1: देखो, हम किसान हैं तो वैसे तो खेती गृहस्थी हम नियमित रूप से सुनते हैं, उसमें सब मौसम की जानकारी भी, मंडी भाव भी और कृषि विशेषज्ञों की जानकारी भी मिल जाती है उसमें, तो वो हम नियमित रूप से सुनते हैं।
0: तो अभी तक किसान वाणी कार्यक्रम से ऐसी कोई जानकारी जिसको आपने पूरी तरह अमल में लाया हो, आपके जहन में है, कुछ याद है?
1: हाँ, कुछ जैसे प्याज की फसल के बारे में कुछ वैज्ञानिक बता देते हैं तो वो रखते हैं, उसका करते हैं, मतलब हम खेती में तकनीक उसकी।
0: किस की बोवनी की है, क्या फसल लेने वाले हैं?
1: सोयाबीन बो दी है।
0: अच्छा, सोयाबीन बोई है।
1: जी जी
0: सोयाबीन बोने का कोई खास कारण कि मतलब जो आपके पसंद के हिसाब से रहता है या मौसम के हिसाब से आपने उसको चुना?
1: नहीं, वैसे क्या है कि हम सोयाबीन की फसल लेते हैं, उसके बाद में फिर उसमें गेहूं, चना, प्याज ये लगा देते हैं, तो खरीफ की फसल में हम सोयाबीन ही बोते हैं।
0: अच्छा, घर में कितने लोग हैं?
1: अब 6 सदस्य हो गए, मेरे लड़के की शादी हो गई इस साल, तो 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, और अभी 4 मई को मेरे लड़के की शादी हो गई तो बहू भी आ गई घर में।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको कि परिवार में बहू भी आ गई और घर में सदस्य की संख्या भी बढ़ गई, तो 6 सदस्य हैं।
1: जी,
0: तो सभी लोग संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं?
1: जी जी सब संयुक्त रूप से रहते हैं, लड़का भी खेती करता है।
0: तो घर की महिलाएं भी आपकी खेतीबाड़ी में मदद करती हैं?
1: हाँ।

0: बिल्कुल करती है।
1: जी, उन्हें कौन से काम दिए जाते हैं?
0: ओ ये निंदाई गुड़ाई का।
1: क्या सावधानियां रखनी चाहिए निंदाई गुड़ाई करते समय?
0: हाँ मतलब अच्छा कि भाई कुछ ये ना हो, और क्या हिसाब से करना पड़ता है।
1: तो फसल के हिसाब से ही निंदाई गुड़ाई होती है।
0: जी
1: आकाशवाणी खंडवा का कोई एक कार्यक्रम यदि मैं आपसे पूछूं कि
0: जी
1: आपको बहुत पसंद है, तो वो कौन सा कार्यक्रम होगा किसान वाणी के अलावा?
0: जी निमाड़ी लोकगीत संगीत।
1: निमाड़ी लोकगीत। कौन कौन से कलाकारों को सुनना पसंद है?
0: मेवाराम नायक, फिर वो बलिराम आसाराम यदुवंशी जी, तुलसीराम रामलाल
1: अच्छा, ये आपको बहुत पसंद है,
0: जी
1: इनके गायक निमाड़ी
0: जी
1: लोकगीत पसंद
0: जी
1: है।
0: जी
1: हमारे श्रोता कार्यक्रम में आने की बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी,
0: जी
1: आज ये इच्छा पूरी हो रही है, कैसा लग रहा है?
0: बहुत अच्छा। मैं खंडवा आया था तो मैंने सोचा कि आज आकाशवाणी जाता हूँ, अगर अपना भी नंबर लग जाए तो देख लेते हैं।
1: तो हमारे श्रोता कार्यक्रम में आपका नंबर लगा। अब
0: जी
1: मुझे ये बताइए कि फोन करी गीत सुनी कार्यक्रम में नंबर लगा था कि नहीं कभी?
0: नहीं नहीं लगा, मैंने लगाया नहीं।
1: अच्छा, इसलिए नहीं लगा कि आपने कभी लगाया नहीं। तो
0: जी
1: मैं जानना चाहूंगी कि भाई आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, तो
0: जी
1: फोन करी गीत सुने कार्यक्रम में क्यों नहीं नंबर लगाया आपने?
0: वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे आते हैं गीतों के और भी प्रोग्राम आते हैं, तो ज़्यादा तो क्या है कि निमाड़ी लोकगीत, खेती गृहस्थी ये ज़्यादा। अच्छा
1: ये ज्यादा आपको पसंद?
0: मैडम जी, मैं एक बात रख रहा हूँ, हमारे गांव के भी गायक थे, उनके भजन क्यों बंद हो गए रामदास जी मालाकार के? हाँ
1: अच्छा, तो चलिए, ये आपकी जो बात है इसको नोट कर लिया जाए। मैं एक और बात आपसे जानना चाहती हूँ किशन जी, खेती किसानी जो आप करते हैं, तो
0: जी
1: इस कार्य में आपको क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या इस काम के फायदे और नुकसान हैं जिंदगी में, आपने जो अनुभव किया वो हमसे साझा करें।
0: इसमें ये है कि किसान को मौसम भी नहीं साथ देता है, बेमौसम बारिश हो जाती है, पकी हुई सोयाबीन की फसल खराब हो जाती है, प्याज निकालने की आ गई और फिर पानी आ जाता है, तो ऐसे तो प्राकृतिक इससे किसान की फसल खराब हो जाती है, नुकसान हो जाता है।
1: तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नुकसान होता है, अगर
0: जी
1: ऐसा कुछ ना हो, यदि प्राकृतिक आपदाएं
0: हाँ
1: ना आए तो
0: हाँ
1: फिर सभी कुछ गाड़ी पटरी पे ही रहती है ऐसा मान लो। तो कितने एकड़ भूमि है कृषि योग्य आपके पास?
0: जी मेरे पास 11 एकड़ कृषि योग्य भूमि है
1: तो
0: जी।
1: पूरे 11 एकड़ में सोयाबीन की फसल लगाते हैं या कुछ और भी?
0: नहीं थोड़ा सा तुअर लगा दिया है, मूंगफली लगा दी है।
1: आप जैविक खेती के बारे में क्या जानते हैं, और क्या आप जैविक खेती के जो तौर तरीके जो यहाँ से बताए जाते हैं उनको आप कितना अपनाते हैं?
0: जैविक क्या वो गोबर का खाद डल जाए अगर ज़मीन में तो वो बहुत अच्छा रहता है, ज़मीन के लिए बहुत बढ़िया है गोबर का खाद होना चाहिए।
1: तो जैविक खेती के बारे में आप गोबर की खाद को
0: हाँ
1: खेतों में
0: वो श्रेष्ठ
1: डालना,
0: है, गोबर की खाद बहुत श्रेष्ठ है, होना चाहिए गोबर।
1: इसके अलावा कुछ और जैविक उत्पाद कभी आपने उपयोग में लिए हो खेती के लिए और अधिक उत्पादन लिया
0: हाँ
1: हो?
0: ये नीम, नीम लेते हैं, नीम खली आती है वो प्याज में हम डालते हैं।
1: तो प्याज की फसल में ही नीम खली का उपयोग किया जाता है, किसी और में भी?
0: नहीं हम उसी में करते हैं, प्याज में ही करते हैं।
1: रेडियो आप सुनने के लिए समय कैसे निकालते हैं, क्योंकि खेती किसानी ये जो काम है ये भी एक महत्वपूर्ण काम है और बड़े ध्यान से करने वाला काम है, तो इन सब के कामों के बीच, इतनी व्यस्तताओं के बीच
0: जी
1: रेडियो सुनने का समय कैसे निकालते हैं?
0: निकाल लेते हैं, शाम में तो घर पे ही रहते हैं, और आजकल FM मोबाइल पे आता है तो वो खेत में भी काम भी हो जाता है और FM भी सुना करते हैं।
1: तो ये जो मोबाइल ऐप के माध्यम से आप रेडियो सुनते हैं, इसकी क्वालिटी कैसी मिलती है?
0: बढ़िया क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है।
1: स्पष्ट सुनाई देते हैं
0: अच्छा बढ़िया।
1: किशन जी। अब चलते चलते हमारे कार्यक्रमों के संबंध में यदि आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं, जो भी आप अपने सुझाव रखना चाहें।
0: अच्छे हैं सब, बढ़िया कार्यक्रम है, पर बस मेरा यही अनुरोध है कि जो गायक हमारे यहाँ के थे वो रामदास जी, उनके भजन पुनः चालू किए जाए।
1: जी, बस
0: हाँ
1: यही आपका सुझाव है,
0: हाँ बस
1: और बाकी सभी कार्यक्रम आपको
0: सबने
1: संपूर्ण
0: अच्छे,
1: लगते
0: बढ़िया
1: हैं।
0: उद्घोषक भी सब अपने अच्छे जवाबदारी से बढ़िया प्रोग्राम पेश करते हैं।
1: अच्छा, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हमारी श्रोता कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ग्राम शिवना की किसान श्रोता किशन मालाकार से।

0: आरती शर्मा की बातचीत।
1: पराग जी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है तो क्यों ना मैं भी अपना एक नया काम कर लूँ।
2: कौन सा काम?
1: मैं सोच रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लिया जाए।
2: अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो।
1: पर मैं अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करूँ?
2: कैसी बात कर रही हो, आकाशवाणी के माध्यम से करो।
1: हाँ, आकाशवाणी तो मैं रोज सुनती हूँ।
2: रोज सुनती हो तो उस पे विज्ञापन दे सकती हो, या फिर तुम किसी कार्यक्रम को भी प्रायोजित कर सकती हो।
1: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम?
2: जैसे हमारे श्रोता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अपनी प्रतिभा को भी अपनी बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
1: मतलब मैं अपने कोचिंग की विस्तृत जानकारी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकती हूं।
2: बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें आप प्रायोजित कर सकती हो, और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में अपनी संस्था के विज्ञापन भी दे सकती हो।
1: ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
3: तो कब जा रही हो आकाशवाणी?
0: सुबह के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से होंगे
4: थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया, कहा यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सानंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की रूपरेखा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम बताया।
1: मुझे बताया गया है यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में निर्मित चिप्स का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के औद्योगिक विकास के विजन को नई गति मिलने की आशा है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के संयंत्र से इस इलाके में विकास को गति मिलेगी।
2: पुरी में डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3,000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। एक नया इतिहास औद्योगिकरण की सूर्य की किरण के रूप में अब स्थापित होने जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र मिलेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ये 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो कि 2014-15 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है।

0: है।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 178,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा यह डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल इंदौर में कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधे संवाद में कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों और बीएलओ ने मिलकर एसआईआर का काम बहुत अच्छा किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों, नागरिक समाज और जनता से सामूहिक तथा समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5,017 नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें माध्यमिक शिक्षकों के 4,067 एवं प्राथमिक शिक्षकों के 950 पदों को नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा ये नियुक्ति आदेश 3 और 4 जुलाई को जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपेक्षा की है कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग को सरल और सुलभ बनाएगी। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिलाधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर सहित 13 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में रीवा बाणसागर और सीधी बाणसागर मल्टीविलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के सावेर में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कॉलेज भवन के निर्माण का निरीक्षण किया। वहीं इंदौर में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के बरगांव में आज सुबह 10 बजे से विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कैरियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा के ओंकारेश्वर के प्रसिद्ध ममलेश्वर मंदिर में विकास कार्यों की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। आगरमालवा के सुसनेर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तौर तरीके सिखाए। और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान भारत, सिकल सेल और टीबी उन्मूलन के लक्ष्य तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांणंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए।

FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

तो श्रोताओं, काली घटा आ ही गई और बरसने भी लगी, जैसा कि मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट कि हमारे ज़िले में झमाझम बारिश का ये दौर अभी जारी रहेगा, तो थोड़ी सावधानी भी ज़रूरी है। लेकिन हम बात करें अगर फिल्मी गीतों की, तो जैसा आप देख ही रहे हैं, बारिश की बूंदें लगातार बरस रही हैं, मौसम कातिलाना हो चुका है, या ये कहें कि अपने पूरे शबाब पर है। तो बारिश की इन बूंदों के नाम, काली घटाओं के नाम, बादल और बिजली के नाम, इन फिल्मी गीतों का नाता पुराना है। तो सुनते हैं एक और ऐसा ही गीत।

श्रोताओं, हर मौसम का अपना एक अलग ही अंदाज होता है। गर्मी का मौसम, तेज धूप, लू और गर्म हवाओं का दौर, जिससे हम बचते फिरते हैं, और वहीं बारिश का हम आनंद लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हर मौसम का अपना एक अलग अंदाज होता है, तो हमें भी मौसम के अंदाज और मिजाज के अनुसार कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। कुछ तैयारी तो पूर्व में ही कर ली जाती है और कुछ तैयारी समय रहते। जैसे फिलहाल अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो रेनकोट या छाता अपने साथ रख लें। हाँ, अब ये बात और है कि आपका मन बारिश में भीगने का हो रहा है, अगर ऐसा है तो फिर भीग लें

तो श्रोताओं, जैसा कि हम बात कर रही थी सुहानी ऋतु की और प्यारे प्यारे नज़ारों की, आज रविवार का दिन भी है और छुट्टी का दिन है ना, तो ऐसे में पिकनिक पर भला कौन नहीं जाना चाहेगा। अगर आप भी पिकनिक पर जा रहे हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन सावधानी भी रखें, किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं, गहरे पानी में ना जाएं, नदियां इस वक्त उफान पर हैं, तो सुरक्षित स्थान तक ही अपनी पहुंच बनाए रखें। हमारे ऐसे श्रोता जिन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक है तो वो भी सावधानी रखें, स्मृतियों को कैमरे में कैद करते वक्त आप सुरक्षित स्थान पर ही रहें। तो छोटी छोटी बातें हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा और जोखिम ना उठाइएगा।

0: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
2: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
1: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
2: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
1: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे मौसम की, मौसम के मिजाज की, बरसती बूंदों की, बारिश की और बारिश के आनंद की। पता है, हमारे एक मित्र हैं जो इस मौसम में बहुत ही नेक काम करते हैं। इस मौसम में जब भी वो सैर पर निकलते हैं या पिकनिक पर जाते हैं तो उपयुक्त स्थानों पर बीज रोपण करते चलते हैं, जैसे फलों के बीज, जामुन या आम की गुठलियाँ। मैंने उनसे प्रश्न किया, आप ये क्यों करते हैं?

बड़ा ही सुंदर जवाब दिया उन्होंने। जानते हैं श्रोताओं, उन्होंने कहा कि प्रकृति को सहेजने के लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। सच में उनका ये जवाब दिल को छू गया। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आप भी प्रकृति को सहेजने का ऐसा कोई छोटा सा प्रयास कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और फिलहाल आनंद लें इस गीत का।

0: पराग जी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है तो क्यों ना मैं भी अपना एक नया काम कर लूँ।
1: कौन सा काम?
0: मैं सोच रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लिया जाए।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो।
0: पर मैं अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करूँ?
1: कैसी बात कर रही हो, आकाशवाणी के माध्यम से करो।
0: हाँ, आकाशवाणी तो मैं रोज सुनती हूँ।
1: रोज सुनती हो तो उस पे विज्ञापन दे सकती हो, या फिर तुम किसी कार्यक्रम को भी प्रायोजित कर सकती हो।
0: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम?
1: जैसे हमारे श्रोता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अपनी प्रतिभा को भी अपनी बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
0: मतलब मैं अपने कोचिंग की विस्तृत जानकारी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकती हूँ।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें आप प्रायोजित कर सकती हो, और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में अपनी संस्था के विज्ञापन भी दे सकती हो।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
1: तो कब जा रही हो आकाशवाणी खंडवा?
0: अभी।
2: और श्रोताओं, एक गुजारिश है जो हम आप सभी से करना चाहेंगे। वैसे तो हर मौसम में ही वाहन चलाते समय सावधानी रखना जरूरी है, लेकिन बारिश के दिनों की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर वाहन की रफ्तार पर अपना नियंत्रण जरूर बनाए रखें। और अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो तो एक सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं, लेकिन हाँ, पेड़ों के नीचे कभी भी खड़े ना रहें। बारिश या बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही जब बिजली चमकती है तो पेड़ों के नीचे खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। तो आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें और बारिश का आनंद भी लेते रहें।

तो श्रोताओं, चलते चलते हम सिर्फ इतनी ही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपनी ख्याल रखें और मौसम का आनंद लें और सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ अब आज के कार्यक्रम को देते हैं यहीं विराम। इजाजत दीजिए अपनी रेडियो सखी आरती शर्मा को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
4: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008।

0: और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
3: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार

0: प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। लीजिए सुनिए बाबुल सुप्रियो की आवाज में चंद सुगम संगीत रचनाएं।

0: इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: FM बैंड 101.2 में

0: हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। सजन रेडियो
1: बजाइयो बजाइयो बजाइयो सारा। जी हाँ साथियों, तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन
0: आकाशवाणी खंडवा।
2: सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
3: आपके मीत ये गीत।
2: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आगाज कर रहे हैं फिल्म गुरु के इस गीत से। आवाजें श्रेया घोषाल और साथियों की, गीत गुलजार का, संगीत ए आर रहमान का।

0: और आइए श्रोताओं, आपको बता दें कि इस गीत को हमने शामिल किया हमारे किन किन श्रोताओं की फरमाइश पर। मारहटा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवीद हसन, अनम यशफ, सुहेल हसन, रसीदवार सी जुबैर और अली खान। जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। बिहार से मुसरत जहानाज, तलत फरहत, रिफत, नुसरत साजिया, शाहीन और नाजिया नूरीनाज। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुडाना, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप और इनके बहुत से साथी। पालदा नाका इंदौर से हसीना मंसूरी, अमीना मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी। मोटक्का माफी खंडवासी जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव ईशान, कार्तिक, भवानी सिंह बैस, रिया रोहन, अंगद ठाकुर। बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन। ग्राम जामली कला से इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी माणक चंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, प्रियांशी, दिव्यांश राठौर, अशोक वाघी, वंदना वाघी और कान्हा वाघी ने। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानु प्रिया और इनके बहुत से साथी। खंडवा से मोहम्मद हसनैन, हसु बाबा, मोइन छोटू, मोहम्मद फाजिल, अरहान खोकर, अनस और शिफा खोकर। पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी मंसूरी और बबलू। कलनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार, अलमास बानो और सबीना जहीर पवार। जिला हनुमानगढ़ से प्रेम सिंह बडवाल, सुखवीर, काजल बडवाल, लखवीर बडवाल, रानू कृष्णा और श्रीमती छिंदो। इसी के साथ इनके साथ प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल, चक्टू और मटकू। खंडवासी कैलाश फूलमाली, सुभाष खंडाले और दीपक समर। जामली कलासी शबीर मंसूरी, साबिर, मुन्ना, फैजल, सोहेल, शहबाज और सिफोन मंसूरी। शेगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मुहाल, दानिश मुहाल, मोहम्मद जुनील मुहाल और रियाज, साथ ही रिजवान। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर था ये गीत।
1: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
3: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
2: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
4: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी
0: कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन और कौशल। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, साकेब और शंकरलाल गंगराड़े, विनीता गंगराड़े और वामिका गंगराड़े। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह और सीटी दीवाना।

साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके परिवार के अन्य सदस्य। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है नासवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा पाटिल और प्रथमेश पाटिल ने, रेलवे कॉलोनी कानपुर से आफ्ताब उल्हाडोम, अल्ताफ उल्हाडोम, वली उल्हा, डब्ल्यू उल्हाडोम और इलाहाबाद से रमेश नाज डोम और बीबी अंसारी डोम। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है ये गीत। फिल्म है दिल तो पागल है, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत उत्तम सिंह का, आवाजें उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों की।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की अनुरोध पर मोतारा महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और इनके परिवार के अन्य सदस्य, पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश मरवा, महाराष्ट्र से संतोष खटसे और विनोद खटसे, करजत से इकबाल अहमद बागवान, शमीम अहमद, इमरान अखलाक अहमद और इनके बहुत से साथी, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कवाणकर, सरिता कवाणकर, प्रणीता और सिद्धांत कवाणकर, साथ ही अर्जुन, प्रिंस और एकांश, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस पूट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, गांव जाखूद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर, योगेश, दीपक और पूजा खटक, उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुंज मुणत, दिल्ली से याकूब आसमा, फकीर, यूसुफ फकीर, असलम और अक्रम आसमा, सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और साहिल, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा सिद्दीकी, रियाज, समरीन, परवीन और इनके परिवार के सदस्य, और जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति और गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर पेश है किशोर कुमार की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत SD बर्मन का, फिल्म है चलती का नाम गाड़ी।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
1: हर लेन देन अब है आसान।
4: और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब शामिल करने जा रहे हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश का गीत। जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति और इनके परिवार के सदस्य, पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, बड़ाबम चौक खंडवा से संजय मारकंडे, ममता मारकंडे और बेबी किट्टू, सरगुजा मैनपाट से रूबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा, आसमा, आतिपा, रमेश और इनकी बहुत से साथी, बुरानपुर से मोहन मुतियार, आरुष, आर्शिया और राजेश कुमार, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता कटारे, उदय उज्जवल और मितांश कटारे, उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, विनीत मिथिल, प्रगति नाचानी और भारती नाचानी, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण पाठे, संदीप पाठे और अमूल्य पाठे, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर अलकमा खत्री, रमेश गौड़, इसहाक लोलामानी, उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, पंजाब से परम सिंह, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दीपिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम और अभिजीत, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग, देविका चौधरी और

के परिवार के सदस्य डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया, जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या और सुच्चा सिंह पाठक, और अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी और सिद्धार्थ गोटाने। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का ये गीत। आवाज किशोर कुमार की, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत एसडी परमन का, फिल्म है तीन देवियां।

0: आपके मीत ये गीत।
1: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। FM बैंड 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में यारियां फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे बैंगिस्तान फिल्म का गाना। लीजिए सुनिए लव ब्रेकअप्स जिंदगी। इस फिल्म का गाना बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर और तर्ज बनाई है सलीम सुलेमान ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है देवी श्री प्रसाद ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं मोहसिन शेख, ज्योतिका टंगरी, मेलोडी और ऐश्वर्या भंडारी की। दानिश साबरी ने लिखा इसे और संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

तो दोस्तों, आज के चित्रलोक प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से आवाज़ें हैं विशाल ददलानी, हंसिका अय्यर की, और इस गाने का तमिल रैप का अंश गाया है श्रीचरण कस्तूरी रंगन ने, बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य और निरंजन अयंगर के, संगीत विशाल शेखर का। तो मैं कहता हूँ आपसे, लेट्स गो ऑन अ डांस फ्लोर।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराए, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1986

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

दे। फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: के फिल्मकारी प्रभाज केंद्रित था। निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव।
2: अभी राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर में ताप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी उफान पर है और राजघाट के 3 शिव मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एसडीआरएफ की टीमें घाटों पर तैनात हैं, जबकि नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। ताप्ती के तेज बहाव को देखते हुए गुजरात के सूरत प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बुरहानपुर में साइबर ठगों की चाल नाकाम करने के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.0 अभियान तेज हो गया है। बीते दिनों शाही जामा मस्जिद परिसर में मुस्लिम समाज के बीच पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, ओटीपी, यूपीआई और केवाईसी फ्रॉड के नए हथकंडों के प्रति सावधान किया। पैम्फलेट बांटे गए और साइबर शपथ दिलाई गई और चेतावनी दी गई कि अनजान लिंक पर एक क्लिक से बैंक खाता खाली हो सकता है। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत करने की अपील की गई। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन शुक्रवार को पूरी तरह से भक्तिमय रंग में रंगा दिखाई दिया, जब 191 वरिष्ठ श्रद्धालुओं का जत्था जय माता दी के गगनभेदी जय घोष के बीच

0: बीच वैष्णो देवी धाम के लिए रवाना हुआ। विधायक अर्चना चिटनिस और महापौर माधुरी पटेल ने श्रद्धालुओं को पुष्पमाला पहनाकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 3 से 8 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में भोजन, आवास, चिकित्सा और सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने सुनिश्चित की हैं। बुरहानपुर पहुंचे निमाड़ रेंज के डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बीते दिनों समीक्षा बैठक में लंबित मामलों, महिला अपराध, साइबर फ्रॉड, संपत्ति अपराध और कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए। त्योहारों के दौरान बेहतर पुलिसिंग पर बुरहानपुर पुलिस की सराहना की। बैठक में थाना प्रभारियों को ई विवेचना के लिए टैबलेट वितरित किए गए, जिससे जांच प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत बुरहानपुर जिले के 163 हितग्राही परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की। सिंगल क्लिक के जरिए बीते दिनों 3,46,00,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सीधे डीबीटी से बैंक खातों में भेजी गई, जिसमें सामान्य मृत्यु के 153 और दुर्घटना मृत्यु के 10 प्रकरण शामिल हैं। जिला मुख्यालय के एनआईसी कक्ष में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया, जहां जनप्रतिनिधि, अधिकारी और हितग्राही मौजूद रहे। बुरहानपुर के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों को सपनों के पंख दे रही है। पात्र हितग्राहियों को 1.20 लाख रुपए की सहायता और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी मिल रही है, जिससे पक्के मकानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। जिले की समीक्षा बैठक में बीते दिनों स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि, ईकेवाईसी, आधार अपडेट और फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं पीडब्ल्यूडी के सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा गया कि तय समय सीमा में सभी निर्माण कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं। बुरहानपुर जिले में वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर बीते दिनों सुहागिन महिलाओं ने पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ व्रत रखा। शाहपुर में महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और विधि विधान से वट पूजन कर पति की बरगद जैसी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। इस दौरान भक्ति परंपरा और सुहाग का अनुपम संगम देखने को मिला। बुरहानपुर में भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पखवाड़े के तहत स्वामी परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, शिक्षा, योगदान और राष्ट्रहित में उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस, विधायक मंजू दादू, जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने सहित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीते दिनों कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले में कृषि चौपालों का आयोजन कर खेती की आधुनिक व प्राकृतिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्नत बीजों की थैलियों की आकर्षक ब्रांडिंग और व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। बैठक में डीएपी, बीज, उर्वरक उपलब्धता और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है बाल श्रोताओं के लिए उनका पसंदीदा कार्यक्रम बाल जगत।

स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने कार्यक्रम बाल जगत में। ढेर सारा प्यार लिए आज आपके साथ है आपकी शीतल दीदी। बच्चों, आप निश्चित ही स्वस्थ होंगे और रोजाना स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और बच्चों, आपके शिक्षक और घर के सभी सदस्य भी तो यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ाई, खेलकूद और हर काम में अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन ये सब संभव है अच्छी आदतों और पौष्टिक भोजन से। बच्चों, अच्छी आदतें हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। सुबह जल्दी उठना, समय पर सोना, रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना, समय पर पढ़ाई करना, बड़ों का सम्मान करना और सच बोलना, ये सभी अच्छी आदतें हैं। और

ये तो आप जानते ही हैं बच्चों कि भोजन करने से पहले और शौचालय से आने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। इससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, साथ ही हमें अपने आसपास के वातावरण को और स्कूल को भी स्वच्छ रखना चाहिए। याद रखिए बच्चों, स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। बच्चों, हमारा जो शरीर है ना, वो एक मशीन की तरह है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए अच्छा ईंधन चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन चाहिए। हमें अपने भोजन में हरी सब्जियाँ, दालें, दूध, फल, सलाद और साबुत अनाज भी शामिल करना चाहिए। ये हमारे शरीर को ताकत देते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। इसके साथ ही दिन भर पर्याप्त मात्रा में साफ पानी भी पीना चाहिए। पानी हमारे शरीर को स्वस्थ और तरोताजा रखता है। साथ ही बच्चों, हमें पता है कि आप चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और मीठा खाना पसंद करते हैं, तो कभी कभी इन्हें खाना ठीक है, लेकिन रोज रोज खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है। इससे मोटापा या फिर दांत खराब होने के साथ ही और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, इसलिए इन चीजों से हमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। साथ ही भोजन भी कभी भी जल्दी जल्दी या टीवी और मोबाइल देखते हुए नहीं खाना चाहिए, बल्कि भोजन हमेशा चबा चबा कर और समय पर खाना चाहिए ताकि हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा रहे। साथ ही बच्चों, अच्छी आदतों में रोज थोड़ा सा व्यायाम और खेलना भी शामिल है। सुबह की सैर, दौड़ना, रस्सी कूदना, योग करना या अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलना हमें स्वस्थ और सक्रिय बनाता है। याद रखिए बच्चों, अच्छी आदतें और अच्छा खान पान ही अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कुंजी है। आज जो अच्छी आदतें हम अपनाएंगे, वही हमें कल एक स्वस्थ, सफल और जिम्मेदार नागरिक बनाएगी। और बच्चों, हम खान पान की बात कर रहे हैं, तो हम यदि आपसे पूछें कि क्या आपको चॉकलेट पसंद है, तो हमें पता है आप मुस्कुरा रहे होंगे और आपका जवाब भी हाँ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं चॉकलेट की बात क्यों कर रही हूँ, तो हम आपको बता दें कि हर साल 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 2009 में हुई थी और 7 जुलाई 1550 को पहली बार चॉकलेट यूरोप में लाई गई थी। यह दिन दुनिया भर के लोगों को अपनी पसंदीदा चॉकलेट, केक और डेजर्ट का आनंद लेने का मौका देता है। बच्चों, चॉकलेट स्वादिष्ट होती है, लेकिन ध्यान रखें, हमेशा सीमित मात्रा में ही चॉकलेट खाना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट या फिर कोई मीठा खाएंगे, तो दांतों में कीड़े भी लग सकते हैं, वजन भी बढ़ सकता है। और यदि आप चॉकलेट खाएं भी, तो उसके बाद पानी से कुल्ला ज़रूर करें और रात में भी सोने से पहले अपने दांत अच्छी तरह ब्रश करना ना भूलें। तो बच्चों, ये थी आज की चर्चा और अब सुनते हैं ये गीत।

0: बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि अच्छी आदतों में योग भी शामिल है। योग से बहुत सारी बीमारियां समाप्त होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा। ये बीमारियां सिर्फ बड़ों में ही नहीं बल्कि अनियमित दिनचर्या और खानपान से कई बार बच्चों में भी हो जाती है, और बच्चों ध्यान ना देने पर गंभीर रूप धारण कर सकती है। इसलिए योग सबके लिए जरूरी है। इसी विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए सुनते हैं वार्ता योग से आरोग्य की सीख दादाजी के मुख से। जानकारी दे रहे हैं योग गुरु करमचंद कौशिक। बच्चों, ये वार्ता आपके साथ साथ घर के सभी सदस्यों के लिए जरूरी है ताकि वे भी गंभीर बीमारियों से बचे रहें। इसलिए अपने साथ साथ अपने घर के सभी बड़े सदस्यों को भी ये वार्ता जरूर सुनवाएं।
1: आदरणीय श्रोतागण, योग के द्वारा बीमारियों में जो इलाज होता है जो उसके बारे में आज बताने आया हूँ मैं। वैसे तो योग द्वारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, मधुमेह, मोटापा, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप। योगिक आसन शारीरिक मानसिक क्रियाओं का एवं प्राणायाम का भी वर्णन दूंगा जो लोगों को दूर करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप की बीमारी को शवासन से दूर किया जा सकता है होता है नियमित 1 से 3 माह तक अभ्यास करके। यह शवासन मानसिक और शारीरिक थकान तनाव दूर करने में सहायक है। इसमें शरीर व मन को पूर्ण विश्राम, शांति और आनंद मिलता है, जिसके फलस्वरूप उच्च रक्तचाप तथा अन्य बीमारियों में लाभ होता है। उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप के रोगी को नियमित 20 मिनट से 30 मिनट तक सुबह शाम नियमित अभ्यास करके उच्च रक्तचाप निम्न रक्तचाप जैसे रोग में

निदान पाया जाता है और पाया जा रहा है। मधुमेह अब दूसरी बीमारी है, इसको यौगिक क्रिया के अंतर्गत आने वाली पाद मस्तक संयुक्तासन करके मधुमेह शुगर डायबिटिक बीमारी को दूर किया जाता है, अथवा यह पाद मस्तक संयुक्तासन क्रिया यौगिक क्रिया के नियमित सुबह शाम के अभ्यास से 1 से 3 माह एवं कम से कम 7 रोज तथा 1 पखवाड़ा 15 रोज यानी कि 2 सप्ताह करके भी लाभ लिया जा सका है, ऐसा चिकित्सकों ने बताया है। ठीक है, इस आसन के दौरान पांव के तलवे सिर से मिला दिए जाते हैं, इसलिए इसे पाद मस्तक संयुक्त आसन कहा गया है। विधि, किसी कालीन व कंबल पर चादर पर पेट के बल लेट जाएं, पैर और पंजे आपस में जुड़े रहें, पश्चात इसके दोनों हथेलियों सामने फर्श पर टिकाकर नाभि के ऊपर का भाग उठाकर पीछे ले जाएं, इसके पश्चात पैरों को उठाकर नितंबों की ओर लाएं, उन्हें सिर के साथ स्पर्श करें अर्थात सिर को पांव के पंजों और तलों पर टिका दें, नाभि से लेकर घुटनों तक का पूरा भाग धरती से सटा रहे, इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लें, यह यौगिक क्रिया यथाशक्ति अनुसार 3-4 बार तक कर सकते हैं। यह पाद मस्तक संयुक्त आसन यौगिक आसन क्रिया की नियमित सुबह शाम 1 से 3 माह तक कम से कम जरूर करें। यौगिक क्रियाएं निश्चित रूप से रोग को बीमारी को बाद पीत कब्ज जन्य दोष को दूर करके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में सहायक हैं। इस आसन से मधुमेह हमें तो लाभ मिलता ही है, साथ ही साथ संपूर्ण शरीर विशेषकर रीढ़ पीठ गुर्दे पेडू पेट हाथ पैर गर्दन आदि को अच्छा व्यायाम हो जाता है। इससे मधुमेह शरीर दर्द प्रमेह तथा त्रिदोष बात पीत कप विकार दूर होता है, चेहरे पर तेज कांति की आभा चमकती है। तीसरा, आगे बढ़ते हैं, मोटापा। यह एक अत्यंत जटिल बीमारी है, यह सब असंतुलित आचार विचार व्यवहार व खान पान से भी संबंधित रहता है। मोटापा दूर करने में बहुत सी यौगिक क्रियाएं, आसन प्राणायाम और ध्यान योग की विधियां सहायक हैं। यहां अभी एक यौगिक क्रिया आसन गर्भासन का जिक्र करने जा रहा हूं, जो मोटापा दूर करने में सहायक है। यह आसन है गर्भासन। इस आसन में शरीर की आकार गर्भस्थ शिशु के समान हो जाती है। करने की विधि, किसी मोटे कंबल गद्दे चादर पर पद्मासन लगाकर बैठ जाएं, इसके बाद कुक्कुटासन की तरह दोनों हाथों को कोहनियों तक जांघों और पिंडलियों के बीच से निकालकर सिर के बल धीरे धीरे लेट जाएं, फिर दोनों हाथों से दोनों कान पकड़ लें, दोनों हाथों को गर्दन के पीछे तक भी ले जा सकते हैं, सिर के नीचे तौलिया लपेट कर रख दें जिससे सिर आराम से टिका रहे। इस गर्भासन को करने से मोटापा छंट जाता है, मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। यह यौगिक आसन मोटापा दूर करने में सहायक है। इसके अलावा धनुरासन उत्तम आसन है, इसके तथा योग मुद्रा वज्रासन जानुशीरासन आदि आसनों से भी यौगिक आसन और यौगिक क्रियाओं से मोटापा जैसे कठिन बीमारी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका उदाहरण यौगिक शास्त्र ग्रंथ तथा वर्तमान में यौगिक चिकित्सक करके दे रहे हैं। ठीक है, धनुरासन करने की विधि, इस आसन में शरीर का आकार या स्वरूप धनुष के आकार का हो जाता है, इस कारण इसे धनुरासन कहा जाता है। अक्सर कहा करते हैं धनुरासन करके योगासन क्रिया के द्वारा मोटापा दूर भगाएं। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ने से युवावस्था बरकरार रहती है, तरोताजा युवान सा लगने रखता है आजीवन, ऐसा योगाचार्य कहते हैं। पेट के कोनों में फंसी अत्यधिक

0: अतिरिक्त चर्बी निकल जाती है। इसके अलावा शरीर में चुस्ती फुर्ती स्फूर्ति आती रहती है, जिससे मोटापा कम होना स्वाभाविक रहता है। इसी प्रकार सर्वांग आसन, हलासन, भुजंग आसन, मकर आसन, इन आसनों से भी मोटापा कम करने में सहायता होता है। अब आगे चौथा आसन पे आते हैं, अनिद्रा, जिसको इंसोमनिया भी कहते हैं। नींद नहीं आने की बीमारी, जिसके कारण नींद आने की गोली खाते रहते हैं। आज के इस भाग दौड़ की व्यस्तम जीवन शैली में भरपूर नींद, खान पान, आहार विहार नहीं होने के कारण यह अनिद्रा की बीमारी होती है, जिसके कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और अपने साथ मधुमेह, मोटापा, रक्तचाप जैसे अन्य उपरोक्त बीमारियों को भी शरीर के अंदर पनपने देने में सहायक होता है। इस अनिद्रा इंसोमनिया के बीमारी को यौगिक आसन क्रिया वज्रासन, शवासन, प्रेतासन, मृतक आसन से तथा सर्वांग आसन और भुजंग आसन तथा हलासन और पश्चिमोत्तान आसन एवं जानुशीरासन करके भी अनिद्रा जैसी भयानक बीमारी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए भी उचित आहार, खान पान, संतुलित दैनिक जीवन व्यवहार में वापरना जरूरी होता है। यह सब यौगिक क्रियाएं और आसन, ध्यान, आसन अभ्यास करके अपने शारीरिक मानसिक व्याधियों को दूर भगाने में सक्षम और समर्थवान बने रहते हैं। योग में योगेश्वर कृष्ण भगवान कहते हैं, संबुद्धि युक्त योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग और इनकी क्रियाएं शास्त्रोक्त विधि और जैसे योग गुरु योगाचार्य ऋषि महर्षियों के निर्देशानुसार करने पर सभी उस परम ब्रह्म परमात्मा के बताए मार्ग का अनुकूलन करने में मानव जगत समर्थवान है एवं योग रखे निरोग को चरितार्थ कर रहे हैं।
1: बच्चों, अभी हमने सुनी वार्ता योग से आरोग्य की सीख दादाजी के मुख से। वार्ताकार थे योग गुरु करमचंद कौशिक। उम्मीद है बच्चों आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

और बच्चों अब है स्टोरी टाइम। तो चलिए सुनते हैं कहानी कटु वचन। बच्चों एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई आपस में बड़े ही प्यार से और सद्भाव पूर्वक रहते थे। बड़े भाई कोई वस्तु लाते तो छोटे भाई और उसके परिवार के लिए भी अवश्य ही लाते, और छोटा भाई भी सदा ही उनको आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता था। लेकिन एक दिन किसी बात पर दोनों में कुछ कहासुनी हो गई, बात बढ़ गई और छोटे भाई ने भी बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच में दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई भी किसी से नहीं बोलता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। मार्ग में यदि आमने सामने भी आ जाते तो कतराकर दृष्टि बचा जाते। अब कुछ सालों बाद छोटे भाई की कन्या का विवाह आया तो उसने सोचा कि बड़े अंत में बड़े ही हैं, आखिर हमें जाकर मना ही लाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा और बोला कि अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई नहीं पसीजा और उसने चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाया जाए। इधर विवाह के भी बहुत थोड़े ही दिन शेष रह गए थे, सगे संबंधी भी आने लगे थे। तभी एक संबंधी ने बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास नित्य ही जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की और गहरा पश्चाताप भी व्यक्त किया और उनसे प्रार्थना की कि आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दीजिए। अब दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उनसे पूछा कि क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तो तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो। तब वह बोला कि मैं विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझसे ऐसे कड़वे वचन कहे थे कि जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। तब संत जी ने कहा कि सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। अब सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि बताओ मैंने पिछले रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था। अब भाई मौन। काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला कि माफी चाहता हूँ, कुछ याद नहीं पड़ता कि कौन सा विषय था। तब संत बोले, देखा मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कई वर्ष पहले कहे गए थे वो तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। तो

अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तो उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे, और जब जीवन ही नहीं सुधारा तो सत्संग में आने का क्या ही लाभ रहा भला। अब कल से हमारे यहाँ मत आना। अब बड़े भाई की आंखें खुली, उसने आत्मचिंतन किया और स्वीकार किया कि मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। बस फिर क्या था, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े छोटे भाई के घर गया, उससे क्षमा याचना की और उसे गले लगा लिया। बच्चों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। हमारे बड़े टीचर्स, हमारे घर वाले, मम्मी पापा, दादा दादी या हमारे बड़े भाई बहन, जो भी कोई हो, हमसे बड़े या हमसे छोटे, अक्सर उनकी कही किसी बात का हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह ही उनसे दूरी बना लेते हैं। हमें चाहिए कि हम आपसी बातचीत से मन में उपजी कटुता को भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं, न स्वयं किसी से रूठें और न ही किसी को रूठने का मौका दें। तो बच्चों, यदि ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो बच्चों, शुभ काम में देरी क्यों, उठाइए फोन और हो जाइए शुरू रूठों को मनाने में। दूसरों की गलतियों को भुलाते हुए स्वयं ही वार्तालाप प्रारंभ कर दीजिए और अपना और उनका दिन खुशियों से भर दीजिए। आखिर बड़प्पन भी इसी में है। और बच्चों, अब वक्त है जिज्ञासा का।

0: बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि बारिश के मौसम में बिजली चमकती है और बादल गरजने की आवाज़ भी आती है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? बच्चों, आसमान में जब बिजली चमकती है तो उसके आसपास की हवा अचानक से बहुत गर्म हो जाती है। यह गर्म हवा तेजी से फैलती है और यह जब ठंडी हवा से टकराती है तो एक जबरदस्त शॉक वेव बनती है। यही हमें गरज के रूप में सुनाई देती है। दरअसल बारिश के दौरान बादलों में पानी की बूंदें और बर्फ के छोटे टुकड़े बहुत तेजी से ऊपर नीचे गति करते हैं। इस टकराव के कारण बादलों में विद्युत आवेश पैदा हो जाते हैं। जब बादलों का धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज आपस में मिलता है तो बहुत तेजी से बिजली चमकती है। बच्चों, आपने देखा भी होगा कि पहले बिजली चमकती है और फिर कुछ सेकंड बाद उसके गरजने की आवाज आती है। तो उसका कारण यह है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है। प्रकाश की गति 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि हवा में केवल 343 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। इसलिए बिजली की चमक तो हमें दिखाई दे जाती है, पर उसकी गड़गड़ाहट हम तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लेती है। और बच्चों, अब सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।
1: सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्ने, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
2: क्या माँ?
1: चल

0: पलक के जादूगर ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता?
1: क्या माँ,

0: और बोला,
1: क्या माँ?
0: चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे
2: घोड़े टिक टिक टिक। और बच्चों, अब आज के बाल जगत कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, तो आज्ञा दे अपनी शीतल दीदी को। जय हिंद।

0: अभी बाल जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था।
1: श्रोताओ, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाते हैं पंडित भीमसेन जोशी का गायन, राग है सुरमलहार।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग सुरमलहार। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: FM बैंडी स्वीक 2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया
1: जी।
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी, जी,
0: रहे
1: जी।
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही और... बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है, आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नौरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोतो, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मन पसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप, राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है, इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: क्षमा मैं भूल हूँ, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी,
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर
0: हाँ।
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार, और
0: हाँ।
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की,
1: इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी, एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की
1: जी,
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी।

0: एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशोरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
0: जी,
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी फिल्म के लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे
1: जी। 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत, और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए।

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
0: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कंपटीशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोताओं, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और यकीन मानिए उस आवाज को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्य।

0: कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
1: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2,000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतन आनंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केदारनंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतन आनंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो, कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आया आगे, तो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सर करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में।
5: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया,
4: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीज़ें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, वो छोटी छोटी चीज़ें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीज़ें उसने, बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है। स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुन करके बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे,
1: बहुत लोकप्रिय गायक। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं।
0: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे। और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में, ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था, बहुत ही हिट था उन दिनों। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो

0: बहुत करीब थे।
1: जी हाँ,
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास से श्रोताओं, जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं
0: जी।
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था
0: जी।
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा, जो आम तौर से लोग बहुत ज़्यादा सीख कर गाते हैं, उस तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है
0: जी।
1: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना, इस तरह बचपन से मुझे काफ़ी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊँगा,
0: कामयाब होंगे
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर BCOM तक पढ़ाई की, खींचा तानी करके।
0: अच्छा।
1: घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नजर नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं, तो मैंने फिर भी काफ़ी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो, वक्त बर्बाद नहीं करना है,
0: मुंबई चले आना।
1: हाँ, बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा, और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे, कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ। यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा, अब भी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
0: किसने कहा था?
1: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो, तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया।
0: अच्छा।
1: रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग है फिल्म मर्द के लिए, अमिताभ बच्चन।
0: अच्छा।
1: मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया, तो रिस्पांस इतना अच्छा था, क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और जाकर
0: जिक्र करते,
1: हाँ, कि अरे फला एक नया लड़का है उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अन्नू मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचमदा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म, ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
0: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, तो कैसे मिला था?
1: इसका तो कमाल है, आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और हूं और आगे भी रहूंगा,
0: रहेंगे।
1: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं। क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के, तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन

0: एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर।
1: जी जी
0: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशि लाल नायर। कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है।
1: अच्छा
0: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन। तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कही है या रफी साहब की चाहत थी, क्या थी कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि ए मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं ना
1: जी,
0: प्रिट नेम है, बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है। तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
1: जी,
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर। इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं क्योंकि रोज का काम है उनका।
1: जी, जी।
0: वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एकदम सन्नाटा छा गया। वो
2: न फनकार तुझसा

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व. गाना जब बनता था ना तो जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी. कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया? अच्छा
1: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या
0: जी.
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को
0: जी.
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे. बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है.
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
1: आपको बताओ, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने. और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए
0: जी.
1: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया
0: जी, जी.
1: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ
0: क्या
1: पूरा हो गया जी, बिल्कुल.
0: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था?
1: मैं एक दफा गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई एसडी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था
0: जी,
1: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था. ये बात है 1976 की.
0: अच्छा.
1: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था. और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए नए लड़ जाइए, ये सब बिहार का सिचुएशन देखकर. पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा. ये कब? जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला. देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो.
0: अच्छा.
1: वहाँ

0: गया मैं
1: हाँ
0: 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर, और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अधनायक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज़ दे कहाँ है, और गाने के बोले रुलाने को आंसू, जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में बताइए।
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था। वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा। इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं। एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी जी
1: नात मनकबत जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी,
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है।
0: अच्छा,
1: वो सारे हनुमान चालीसा सारा टाइटल भी आपने सुना होगा, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल पूरा चौपाइयां दोहे जो जो थे वो सारे वो सब मैंने गाया। मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
0: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है, और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए।
0: अच्छा,
1: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं
0: जी,
1: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो उसमें 4 सिंगर है। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था
0: जी।
1: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2,500 है, और 4,000 के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने
0: जी जी,
1: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10,000 के ऊपर गाने मेरे।
0: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
1: 17 या 18।
0: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
1: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा। खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब के रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते हैं।
0: मगर मनीषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस आएंगे विविधा का अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को आपके मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए ये एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक

0: रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत, महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जमाने को दिखाना है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बरसात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: समीर के बोल आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। दामिनी फिल्म का ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और येसु दास की आवाज़ों में दौड़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज़ में ये गीत।

दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विनोद राठौर और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत क्रिमिनल फिल्म से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या होंगे, कौन से शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जा सकते हैं। तो आज की इबारत, हालांकि आपने में से बहुत से लोगों ने तो इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम एक बार बता देते हैं वो इबारत कि कोई फुर्सत के पल ढूंढता है तो किसी को नौकरी की है तलाश, कोई सबसे दूर होकर खुश होता है तो किसी को चाहिए सब आसपास, उम्मीदों आशाओं चाहतों और जरूरतों का फैला हुआ है आकाश, कभी यहाँ दुख की बदली छाए तो कभी फैले भोर की उजास। क्या कहता है आपका मन, क्या है मुकम्मल जहाँ किसी के पास। तो ये है आज की इबारत जिनमें से शब्द चुनने हैं आपको और इन शब्दों को चुनकर आपको बताना है कि कौन से गीत शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और बता भी दिया है कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक गीत जो आपकी और हमारी लिस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है बातों के साथ भी और जज्बात के साथ भी, वो गीत तो कार्यक्रम का पहला गीत ही बनने वाला है। वैसे हमारे साथी कहते हैं

ये जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यही है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी इन अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं। क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वो है अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तानों में ही अक्सर सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और साथी कहते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। जो गर्मी में सूरज से निकलती कड़ी धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव ढूंढता है, तो ठंड के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए वही सूरज की तलाश करता है। इसलिए कहा गया कि ये जीवन है, जीवन का यही है रंग रूप। बिल्कुल सही बात आप दोनों ने कही। हम लेकिन आपसे ये पता करना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई सारी चीजें अधूरी अधूरी रहती हैं जीवन में, या कहीं ना कहीं हमारा मन इस तरह से चलता है या इस तरह से कहें कि काम करता है कि उसे हर चीज अधूरी लगती है। जो भी चीज पूरी हो जाती है उससे आगे क्या, ये सोच जब हमारे मन में होती है तो हमें कई चीजें अधूरी लगती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और ये भी बताइए कि आपको किस चीज की तलाश है। जो भी तलाश हो सकती है हमें बताइए, और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है कि इसमें आवाज किसकी है, क्योंकि हमें तलाश है इस जवाब की।

0: ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म के। इस गीत में आपने सुना भूपिंदर और लता मंगेशकर की आवाज़ को, जो कि हमने आपसे पूछा था, सवाल का सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथियों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है कई बार, जैसे छत पर पड़े रहकर या सोकर तारे देखना या आसमान में मतलब जाड़ों की धूप सेकना, तो इस तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। तो क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ों का अनुभव लिया है या कुछ की उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन में है, ये हमें बताइए। और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल जहां बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं, उम्मीदें और चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई फुर्सत के पल ढूंढता है, कोई नौकरी की तलाश में, कभी दुख तो कभी सुबह की फैली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूरज की भांति अंधेरे को मिटाकर जीवन में रोशनी भर देंगे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का माया जाल है, एक धागा सुख का तो 100 धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ हर एक को सुख की तलाश रहती है, फिर भी हमें कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं होता। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। जीवन में अक्सर गम के साए नजर आते हैं, सह लेता है हर दर्द को जो हंसकर। असल में वही लोग इस जहां में मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन वाकई हर चीज में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में है उसमें भी एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून तो होता ही है। वरना तो हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इस गीत में भी है ढूंढने की कोई बात। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत और फिल्म में कौन है इस गीत में नायक।
1: डियर सर, सेवा में।

नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह, क्या बात आपने कही। हमारे और साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है, फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जो जमीन मिली है वो, जो आसमां मिला है उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ तो शायद अपना अधूरापन भी पूरा लगने लगे। वहीं हमारे साथी ने कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ता है, जब धूप तेज होती है तो बाहर जाकर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये एक चाहत होती है कि कुछ पल सुकून के मिले। एक गीत मुझे बहुत याद आता है, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस तरह से उन्होंने बहुत से गीतों का उल्लेख किया। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, हर किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहत है, अपनी कहानी है। कोई फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है तो कोई काम करके खुशी ढूंढता है, तो किसी का संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख के बादल घिराते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यही है कि हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कोई अपनों की भीड़ में अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन का चक्र है। इसलिए मुकम्मल जहां शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो अपने आप में संतोष, कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है, उसके लिए ये हर अधूरापन एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा, और वाकई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन जैसे कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन भर, जबकि वो उसी के पास होती है, तो हर शांति जो है वो हमारे अंदर ही है। और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताइए जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज़ में है, नायक नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हमने पूछा था भाई कौन नायक नायिका हैं इस फिल्म में बता देंगे, तो हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी इस फिल्म में नजर आती है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, सर्दी में गुनगुनी धूप का आनंद लेना तो आज भी लेते हैं। तो ठीक है, वो दिन लद गए तो उसका कारण तो हम बाद में जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं। वहीं लेकिन हमारे साथी कहती हैं कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते, न सपने, न लोग, न जिंदगी। हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। शायद यही जीवन है, तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ ना मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में कुछ कमी है तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह, क्या बात आपने कही। हमारे और साथी कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है। जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है। जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी न

0: किसी चीज की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरी चाहत जन्मती। इसी तरह इसी आकाश के नीचे कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज ढूंढी है, बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज की तलाश सबसे ज्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए, फिल्म का नाम भी।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, कि हमारे जीवन में हर चीज़ मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज़्यादा किसी चीज़ की चाह नहीं है, या जिन चीज़ों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ज़िंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफ़र जीवन रंगमंच है। इससे पल इसमें हर पल हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए थे, लेकिन घर की होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धनपत्नी ने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट पकड़ा दी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आज सभी आइटम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई है। तो और वो कह रहे हैं कि मैंने भी कहा जो हुक्म मेरे आका, पर मार्केट सुरीला सफर प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर देने हैं, क्योंकि रविवार को होता है ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन। और आप कैसे बताते हैं अपना ये छुट्टी का दिन भी हमें बता सकते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने आंगन में चार पहिया खाट पर आसमान के नीचे तारों को देखकर मीठी नींद में सोने का आनंद खूब लिया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल ढूंढता है इस गीत के अंतरे में जो जो बातें हुई वो बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी उम्मीदों को बताते हैं। और उनका कमेंट थोड़ा खो गया है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की उम्मीद, इस तरह की ख्वाहिशें होती ही हैं, उसमें से कुछ तो ज़रूर पूरी हो चुकी होती हैं बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों के लिए बाकी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस गीत के विषय पर आपने जो पूछा उसकी एक बात वो है, वादियों में खामोशी सुनने की उन्हें चाह है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये चाह जल्दी ही पूरी हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नेहा जी, इच्छाओं की सूची पहले बहुत लंबी थी, अब थोड़ी छोटी कर ली है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब तलाश समाप्त होती है तो दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। आम चीज़ें भी खास लगने लगती हैं, सुबह की धूप, हवा का झोंका या किसी की मुस्कान, हर छोटी चीज़ में एक गहरा रस महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई जब हम अपने जीवन में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं, नज़रिया बदलते हैं, तो बहुत सी चीज़ें भी बदलती जाती हैं, हालांकि वो वही होती हैं जो पहले भी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज़ की तलाश नहीं है तो कोई एक ऐसा ही गीत हमें मिला है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी आज की लिस्ट क्या थी काम की, रविवार की कोई काम की लिस्ट बनाई थी आपने छुट्टी की, या आपका आपकी छुट्टी सप्ताह के किसी और दिन होती है, ये आप बताइए। और ये भी बताइए कि किस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवीन से लिखा, रोशन का संगीत, मन्नाडे, आशा भोसले, बत्तीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया, अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वहीं हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुशनसीब हूँ जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया, पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुनना सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना। ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं, और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना, इस फॉर्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का जरूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाजार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता, हमारे यहाँ बाजार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मानसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग एक घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई है, इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिजायर लेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है, सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान जरूरत से ज्यादा ईश्वर से मांगता है। और

एक और साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के जमाना देखा. तो ये इनका कहना है. साथी कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा भाई, सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं. और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर. कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं. बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे.

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी और साथी कहती हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदर नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते, पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10

साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफी। असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं। कोई कहे तू है ना टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही हमारे एक और साथी ने। इतवार का क्या प्लान है, ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें बताइए। और हमें ज़रूरत है कि इस गीत को किसने गाया है, ये भी आप हमें बताएं।

है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूँ, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा, वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कहने कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं वो बता रहे हैं कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की, क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी का देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने किस्सा लिख भेजा है कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईने के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने सामने आती गई और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि 4 हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं, क्योंकि 4 हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ज़रूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति इन ज़रूरतों को ज़रूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

0: जरूरत।
1: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने कि आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं, इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज इतवार है, फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में, गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी उनके फरमाइश की। एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता, तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया. फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना. के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक क्लिंटोन की आवाज़ में आपने ये गीत सुना. इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत. कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर आप सुन रहे हैं. हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ. भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है. हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की ज़रूरत है क्योंकि हम अकेले हैं. कहने को तो सभी ही हैं एक परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है. मैं पत्नी को मिस कर रहा हूँ जो अब नहीं है. बिल्कुल आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं. आपको समय पर चाय, नाश्ता, खाना तो ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से ज़रूर मिल जाएगा. हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती हैं और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूँ. भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है. इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं. तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं. हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं.

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है और इसका बड़ा ही मजेदार इतिहास है। दरअसल सन 1947 में 20 से 27 जुलाई तक एक जाने माने वनस्पति शास्त्री M.S. रंधावा ने वन महोत्सव आयोजित किया था। इसका मकसद ये था कि देश हरा भरा हो। सन 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव को सरकारी तौर पर आयोजित करने का फैसला किया। इसका मकसद ये था कि वनों की कटाई को रोका जाए, धरती को हरा भरा बनाया जाए और लोगों को प्रकृति के करीब लाया जाए। और इस तरह से पूरे देश में हर साल वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन वन महोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पौधे लगाएं, रस्म अदा करें और उसके बाद उन्हें भूल जाएं। जब कभी भी हम पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करें, उन्हें संजोएं, संभालें, बड़ा करें और इस तरह से जिम्मेदारी निभाएं अपने पौधे के प्रति।

सिर्फ वन महोत्सव की नहीं है। दरअसल भारत में लगातार हमें पेड़ पौधे लगाकर पूरे भारत को हरा भरा बनाना है, क्योंकि भारत सरकार ने 2030 तक 2 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया है। वैसे भी बीते 7 वर्षों में हमारे देश में जंगल का जो आवरण है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है, तो हमें पौधे इसलिए लगाने हैं ताकि वो ऑक्सीजन पैदा करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, धरती को पकड़ कर रखें ताकि धरती का क्षरण न हो, और दूसरा हरियाली की ये सुहानी चादर मन को सुकून दे, आनंद से भर दे और धरती को गर्म होने से भी बचाए। अब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा है कि मौसम भी अब एक तरह से पटरी से उतर गए हैं। धरती के इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए धरती के सारे मनुष्यों को कोशिशें करनी है। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये कि अपने महत्वपूर्ण दिनों पर, चाहे वो शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो या कोई खास मौका परिवार का, तो पौधा लगाइए और उस पौधे के पास एक पट्टी लगा दीजिए कि ये किस मौके पर लगाया गया पौधा है। क्या आप ऐसा करते हैं?

0: त्रिवेणी में आज बात वन महोत्सव की और वन महोत्सव के बहाने पौधे लगाने की। दरअसल पौधे लगाने की जिम्मेदारी सरकारी तौर पर ही नहीं निभाई जानी चाहिए, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास पौधे लगाएं। अब आप ये कहेंगे कि ऊंची इमारतों में रहने वाले हम सभी लोग अपनी बालकनी में गमले रखते हैं और वहां पौधे लगाते तो हैं, पर इतने से काम नहीं चलने वाला है। नए नए निर्माण के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
1: डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र भी मिलेंगे।
0: अब से कुछ देर में शिवपुरी के स्थानीय पोलो ग्राउंड में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले के 211 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजनबाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रोबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया और उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को भारत तथा विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने

शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P652 ने दो नन्हे शावकों को जन्म दिया है। दोनों नवजात शावकों की उम्र लगभग 10 दिन के आसपास हो गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार सुनेंगे दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
2: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना 1 साथ पूरे देश

0: लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
3: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक

0: अहमदाबाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
2: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
3: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
1: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें

0: पराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने मा...

0: जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: होशियार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ, सूर्यकांत, सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी के पसंद पर सुनिए ये गीत, जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहु बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
1: श्री मोहन नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
2: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं, बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं।
1: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
2: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गांव में हुआ है, और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे। कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली। तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई, और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
2: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहाँ का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहाँ बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी और वहाँ का जो समाज है, विशेषकर जो जनजाति आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद, खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता था, क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में, और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग माह में पदयात्रा की गांव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है, और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किए जाए। वहां के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टॉप डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हमने, हम एकल विद्यालय भी वहां पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के, अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया, और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15 से 20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांव में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है, और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके 1-1, 2-2 एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एडुकेट किया है? जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
2: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गाँव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपके गाँव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गाँव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की ट्रेनिंग में, उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया, और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन, व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारे गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, जैसे कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं। हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किए, क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उसमें बच्चे लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं।

0: सरकारी जॉब में भी गए हैं और कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्यधारा से जुड़ गए हैं या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजातीय आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है, और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रहकर के तो जंगल खत्म कर दिए, गांव में जंगल खत्म कर दिया, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उन्हें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के। कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णा मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए, और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में, और जो पलायन था। फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क सब गांव गांव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा एक गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
0: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपके गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, और इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए, इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहां की जो सोना घाटी उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया, वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहां जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की, और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने हैं ये सब हमारे ओवरहेड टैंक के पानी की टंकियां हैं, जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं। हाँ। तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, इस वर्षा का जल भर जाता है बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया, और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है, और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहाँ के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा अवतरण अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी तो वो भी जल का संचयन कर सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए, फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये 3 बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा, ये 3 बातें। सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके, उसके लिए हमारे घर की छत 1000 फुट के भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की

0: से अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहें उतना मनचाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं। अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं, कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए और छोटे छोटे काम अपने गांव के, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके, फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर भी करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30,000 से 35,000 लीटर पानी केवल उतने माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोनाघाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल, वो उसी पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों का आह्वान किया कि ये सोनाघाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई और उसके बाद फिर 32,000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। तो ये काम समाज के माध्यम से कर सकते हैं और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के, परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसको लेकर के कि नदियां कैसे बनती है और लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी, उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्यप्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन, शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जनभागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7,000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7,000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है, शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा ग्राम विकास को लेकर के। और ये जो तीनों बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए, ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखू जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव प्रशांत, राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम।

0: चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरे के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
3: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
4: कौन
5: रानी हीरावती?
3: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
5: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
3: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की साथ पूरी।
6: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
7: भला हम कौन होती हैं
6: महाराज की साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
7: चलो।
3: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
5: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
2: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
3: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
2: परंतु देवी,
3: मेरे साथ छल न कीजिए। वहां आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
2: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
3: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़ी का, हम चलें यहां।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारी किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकुला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना।
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया महाराज, मिल गया। कोई छिपकर सुन न रहा हो, कान में सुनिए।
1: हाँ।
0: मैं नाग को बांध करके नाग मुद्रा लेके
1: जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है, इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझा देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आज ये गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजी
4: आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पाँव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे शियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ प्रतिहारी।

0: भागकर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
1: जैसी देव की आज्ञा।
2: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
3: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाई था कि काल शरीर का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
4: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
3: अरे काल मुझे दबोच लिया।
2: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
3: मेरा तो अन्नंगा करता जा रहा है, सारे शरीर में बहलता जा रहा है।
4: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
5: अरे गौतम, तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
3: महाराज, मैं आपका पाल सका हूँ, सिनाते मेरे बाद मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
2: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
1: महाराज, महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज,
2: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
1: देव की कैसी आज्ञा।
3: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हो वो क्षमा कीजिएगा।
4: नहीं नहीं नहीं, अरे गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
1: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा डली हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
4: मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
1: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम, आइए।
6: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमद वन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन? आर्य गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत माल्विका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो। ओह, यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया। और
0: ठीक है ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
1: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढ कर वहीं ला।
2: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो।
0: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीप भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
1: क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?

0: ये छोटी रानी इरावती है।
1: ओ
0: सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं। ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर डाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
2: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
0: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
4: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रो उठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रो उठ गई थी? स्वामी की जय हो।
4: प्रिय,
5: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
4: मित्र, क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी हैं, परंतु देखते देखते ओझल हो जाती हैं। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
6: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न में भी कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
4: उत्तर क्या दें बकला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
7: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरन चले जा रहा है। आ आ, उसे भगाने चल
0: चले।
7: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह के द्वार पर हूँ।
1: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
8: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
1: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
8: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
1: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
8: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
1: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र की ओर।

0: देवी वो देखिए आज ही गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका। हाँ?
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन।
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंबे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ। ये
4: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
5: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
6: महाराज रुकिए, उधर न जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
5: मैं कहाँ है सांप?
6: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
5: देवी इरावती
1: सखी बकुला वलिका, ये कैसा है? बकुला वलिका,

0: कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
1: देवी इरावती,
2: सखी बकुलावलिका, ये कैसा है?
0: बकुलावलिका, तुझे बधाई है। दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका, भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे?
3: जो आ गया।
4: ओह, तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर कैसा हमने आके रहा?
1: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
0: देवी, क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
3: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
2: सखी बकुलावलिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
0: अच्छा, तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों, प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
5: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
0: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
6: सुनो, राजप्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहरे अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
7: सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार सेवक भेजे हैं।

0: सत्यवती महाराज अग्निवीर
1: ब्रह्मगमन उत्सव में बला रहे
0: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निवीर
1: ब्रह्मगमन उत्सव में पधार रहे हैं।
2: जय हो विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
3: देवी सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
2: विराजिए देव
4: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
3: प्रणाम भगवती
4: आपके मन की साथ पूरी हो।
2: आर्य पुत्र फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
3: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
2: हाँ महाराज जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
3: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
5: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई है यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
3: ले आओ
5: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज प्रस्तुत हैं।
6: महाराज की जय हो। महारानी की जय हो।
3: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
6: महाराज हम लोगों ने संगीत सीखा है।
3: लो देवी इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
2: मालविका आके देवी देखो इनमें से

0: संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
1: अरे राजकुमारी आप यहाँ? जय हो राजकुमारी, जय हो।
0: अरे अरे मालविका राजकुमारी।
2: मालविका राजकुमारी?
1: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
2: कैसे?
1: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
2: भद्रे बताइए, ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
1: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
2: फिर क्या हुआ?
1: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
3: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
2: भगवती आप?
1: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
3: हाँ वही है।
1: प्रणाम भगवती।
3: कल्याण हो।
2: भगवती क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
3: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
2: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
3: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
4: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यहाँ तो दिन में भी जैसे रात हो गई हो।
2: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
3: भैया आप भी तो?
2: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
4: अरे क्या हुआ? क्या सब लोग एकाएक रुक क्यों गए?
5: जान प्यारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
4: वही हुआ ना जिसका भाई था, ठाकुर ने लिख दिया है।
6: चाहिए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: हमारे सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लहू लुहान होकर इधर आ रहे हैं, अरे डाकुओं ने भैया को अकेले ही खेद दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़े हो। हम असहाय रह गए।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
3: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
1: ऐसा ना कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप

0: बैठी रही। और
1: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
1: जो महाराज की इच्छा।
0: राजकुमारी ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधी राज्य का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए यही बहुत है।
1: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र, लाओ देखें।
0: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में 1 वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनों ने पकड़ लिया, हलतह हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
0: फिर क्या हुआ?
2: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
0: महाराज महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला। भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
2: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
0: जय सेन।
1: आज्ञा देवी।
0: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मोह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, वे कोई विघ्न न डालें।
1: देवी की कैसी आज्ञा।
0: मालविका इधर आओ। प्रस्तुत हूँ देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लजा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
3: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजा ही करते हैं।
4: श्रोताओं, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
5: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी, इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है उस तरह के किरदार काफ़ी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफ़ी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
2: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वाज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा यू नो ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूँ या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूँ तो

0: में मैं क्या अलग कर सकता हूं. बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव. फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है, तभी जाके फिल्म अलग बनती है.
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है.
0: एग्जैक्टली. वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में. इसलिए ये बहुत जरूरी था. और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है, इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
0: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे. हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था. लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है. अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं. कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी. लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे.
1: यहाँ गाना सुनते हैं.

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: ओ
0: कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी कामा कराई जात तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि एक बार फिर से वो
0: पड़ेगी।
1: जनाना रोल आ
0: हाँ,
1: रहा है।
0: जनाना रोल आया है, तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था,
1: कहाँ क्या चल रहा है।
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है, अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस
1: और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी
0: ज्यादा।
1: रीलें चलती हैं और
0: हाँ
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो
0: करेक्ट।
1: वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये
1: बिल्कुल।
0: काफी सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त,
1: 80s वाला दौर जो पूरा
0: हाँ हाँ
1: था।
0: हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था,

0: हुकूमत के साथ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और पापा विलन और धर्मजी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई. तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म.
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: तो है. वो चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है. और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुंदा, कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं. तो तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट. कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है. हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से. और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे. तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी. तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो. तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा यू नो बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी. तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे. तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे.
1: हाँ, हाँ.
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है. इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है. और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में.
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग.
1: हाँ.
0: काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ रोल.
1: हाँ,
0: था.
1: और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लू. आई विल नेवर फॉरगेट ये. बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना.
1: हाँ बिल्कुल.
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे.
1: अच्छा.
0: हाँ, और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग.
1: अरे गजब.
0: तो बहुत मजा आता था. तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे. तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी.
1: बाप रे.
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में. बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में. तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के.
1: बिल्कुल. उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं. एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं. हाँ, जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना.
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई. मैं बताऊं क्यों, क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है.
1: बिल्कुल.
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती. मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है.
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की.
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश.
0: ओ,
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है.
0: करेक्ट.
1: वहां
0: करेक्ट.
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है. तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ.
0: करेक्ट.
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था.
0: बहुत ही बहुत ही. और
1: बहुत
0: उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली.
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था.
1: ऑफ कोर्स.
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो. अगेन अमित जी का वो कमबैक था. आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी, और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी.

0: उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट। सब लोगों को ऐसे ना रहे हो, आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे क्या करना है उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के सामने, विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिव जी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं।
0: पूरी
1: वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है।
0: पूरा पूरा इस दैट इज अगेन बिकॉज जैसे मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे। उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना है,
1: अपना फर्ज निभाओ,
0: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट। तो
1: बिल्कुल
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म की बात। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, स्कूल तो, में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है।
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफकोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त।
1: अच्छा।
0: अब मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है। और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो, करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूँ फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था। मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे।

0: थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट एक एक घूट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा।
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे, उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो, जब वो घर पे होते थे। और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना। बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है।
1: ओके।
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी। और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे। पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया, वो हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है। आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है यह आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं। बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखते बैठेंगे।
1: सख्त मनाही।
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया। तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है। और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहाँ पर बीबी का मकबरा भी है। तो एक तो जहाँ पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहाँ पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब पकड़। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए।
1: अरे अरे अरे।
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए, वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते।
1: ओहो।
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्त

0: दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं।

0: कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है, या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो, वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना, तो
0: जी
1: उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो
1: ओके,
0: उनके पंच आते थे।
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे, तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: फिर वो जवाब बाद में
1: हाँ,
0: आएगा।
1: वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था, और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई, और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल
1: फैमिली
0: रही थी।
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था, और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुन्दा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन, और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन,
0: उनको डायलॉग्स
1: जो
0: भी मजेदार मिलते थे।
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने वो किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन।
1: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के,
0: हाँ,
1: ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
0: तो मुझे
1: काम
0: वो
1: किया,
0: दृश्य याद आ
1: बिंदु
0: गया
1: जी
0: जिसमें
1: के
0: वो
1: साथ
0: सो रहे
1: काम
0: हैं और वो
1: किया।
0: जगाने आती
1: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का
0: हाँ।
1: नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि
0: बिल्कुल
1: इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत। तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
0: हुकूमत सड़क
1: अर्धसत्य
0: है
1: दिखाऊंगी,
0: ना
1: ये
0: बिल्कुल,
1: सारी फिल्में
0: इश्क
1: दिखाऊंगी।
0: का रोल तो बहुत ही अलग था,
1: बहुत
0: वो
1: ही अलग
0: तो क्या लीक थी
1: वो
0: वो।
1: तो, मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंद्र कुमार। एक
0: हाँ
1: तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और
0: हाँ
1: टाइमिंग
0: हाँ
1: कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
0: बिल्कुल,
1: पर वो
0: लेकिन
1: इतनी
0: ये कुछ
1: ओवर द
0: अलग
1: टॉप नहीं
0: था।
1: थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी,
0: यस
1: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था, तो
0: अच्छा
1: एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों।

0: रही थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदाजी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी,
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी
1: हाँ,
0: काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए।
0: प्लीज।

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकतनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी। दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी,
0: तब तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म
0: को
1: मिला नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
1: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
0: राइट,
1: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
0: जी।
1: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
0: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
1: बहुत अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत

0: में उनका कितना प्यारा रोल है। तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी। कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे। अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है, तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर वन मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली, एग्जैक्टली। और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी। तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था।
1: बिल्कुल,
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी। तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है
1: जी।
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर। तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहाँ के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफ़ी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है। तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म।
1: बिल्कुल, यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। शाम ढली और चांद निकल आया, मैंने पलकी मूंदी और तेरा चेहरा नजर आया। हर अंदाज था जुदा, हर अदा थी निराली, बहुत भा रही थी मुझे ये खुमारी। तेरे जलवों में खोया रहूं, तेरी पनाहों में सोया रहूं, तेरी बाहों में ही मेरी रात गुजरे, दिन जो भी गुजरे अब तेरे साथ गुजरे। न वक्त की परवाह है मुझे अब, न जिंदगी की फिक्र है, तू ही मेरी मंजिल है, मेरी सांसों में बस तेरा ही जिक्र है।

वो नूर की बूंद जो चांद से टूटकर बिखरी थी मेरे वजूद पर, अब तक भीग रहा है जिस्म मेरा उसी में, छाया है धड़कनों में उसी का सुरूर सा। चांद से मिलने चला था, तेरा चेहरा नजर आ गया, कहकशां तेरे कदमों पर बिछाने की ख्वाहिश जो की, सितारों में

सिमटा, तेरा हुस्न महफिल में छा गया। तेरे लबों की जुम्बिश, तेरी सांसों की हरारत, निगाहों में है मस्ती और अदाओं में शरारत। शोखी तेरे हुस्न की है सबसे जुदा, हर अंदाज लाजवाब है और आंखों में है वफा।

0: कल रात मेरे सिरहाने पर चांद का एक टुकड़ा बिखरा हुआ था। शायद ख्वाबों में आकर तुमने ही उसे रखा था। सुबह सवेरे जब नींद खुली तो गुलों की चादर बिछी हुई थी। शायद तुम्हारे कदमों की आहट यहां कैद हो गई थी। दरीचे से बाहर झांका तो आंगन में मोगरे के फूल खिले हुए थे। शायद तुम्हारी मीठी हंसी की गूंज इन्होंने सुनी थी। आज धूप की किरणें ज्यादा ही सुनहरी हैं। शायद तुम्हारी मखमली जुल्फों को छूकर ही वो यहां आई हैं। चांदनी को ओढ़कर जब तुम निकलती हो सरे शाम, सारे दिए जल उठते हैं और दिल पुकारता है बस तुम्हारा ही नाम।
1: न झटको जुल्फ से पान।

अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है छाया गीत में। तुम्हारी हसीन यादों का सफर अक्सर मुझे भीड़ में भी तन्हा कर देता है। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद।

तपता रेगिस्तान भी मुझे ठंडी झील सा लगने लगता है और मैं एक मुसाफिर सा उसके किनारे बैठकर तुम्हें सोचता हूं। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। जिंदगी जब थकाने लगती है तो तुम्हारी खुशबू का असर कुछ ऐसा होता है कि हर रास्ता छोटा लगता है, हर मंजिल आसान लगती है। मैं चल पड़ता हूँ फिर से उठकर तुम्हारी उसी खुशबू और खूबसूरत याद को आंखों में समेटे।

एक रंग तुम्हारी निगाहों का, एक रंग तुम्हारी अदाओं का, एक रंग तुम्हारे लबों का, एक रंग तुम्हारे गालों का। उस रंग में रंगी हो तुम, उस रंग में रंगा हूं मैं, उस रंग में रंगी हैं हसरतें हमारी, उस रंग में उलझी हैं जुल्फें तुम्हारी, उस रंग में रंगी हैं ये वादियां, उस रंग में खिली हैं कलियां। कहते हैं उसे रंग इश्क का, कुछ मदहोशी का, कुछ सुर्ख सा।

अभी विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। FM एंड 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज सुनिए सोनू निगम की गाई सुगम संगीत रचनाएं।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युववाणी।

तो लीजिए स्वीकार कीजिए अपने आज के दोस्त और कार्यक्रम के होस्ट संचित चौकड़े का प्यार भरा नमस्कार। और जिस तरह से आप रेडियो सेट्स की ओर अपने कान लगाए बैठे हैं, यकीनन हमें पता है कि आज है आपका मन पसंदीदा क्रम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आप जानते ही हैं कि हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने कॉलर से, यानी कि आपसे, और आपको सुनवाते हैं आपके फरमाइशी गीत। तो आज का सिलसिला हम शुरू करें, उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी

0: कौन सा देश करेगा?
1: ये तो थे हमारे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे हमेशा की तरह कार्यक्रम के अंत में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए युववाणी।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
3: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
2: तो लेन देन
3: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
3: जैसे UPI से।
2: अच्छा,
3: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
3: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: हम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
0: दोस्तों, क्या आपको पता है हर वर्ष 6 जुलाई को विश्व भर में विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, क्योंकि कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और खाद्य सुरक्षा का आधार मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय ही है। आज भी विश्व की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और कहते ही हैं हमारा भारत भी गांव में बसता है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन, संचार और बुनियादी सुविधाओं की कमी अनेक चुनौतियां उत्पन्न करती है। इसलिए ग्रामीण विकास केवल आर्थिक विकास का विषय नहीं है, बल्कि है सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास का भी प्रश्न है। विश्व ग्रामीण विकास दिवस हमें यह संदेश देता है कि समग्र विकास तभी संभव है जब गांवों का विकास हो। यदि ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो वे एक समृद्ध, संतुलित और टिकाऊ समाज का निर्माण किया जा सकता है। यह हमें ग्रामीण विकास को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर सामाजिक भागीदारी और सामूहिक प्रयास का विषय भी समझना चाहिए। दोस्तों, ग्रामीण विकास दिवस हमें यह संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि हम ग्रामीण समाज के उत्थान और विकास में अपना योगदान देकर एक बेहतर और समृद्ध भविष्य के निर्माण में सहभागी बने। आइए दोस्तों, आप सुनते हैं रेडियो और वॉइस ओवर की दुनिया विषय पर सौरभ अत्रे से संचित चौकड़े की एक खास बातचीत।
1: दोस्तों, इसी फील्ड से जुड़े हुए हमारे युवा साथी सौरभ अत्रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद संचित, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ सौरभ जी। पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे बहुत से युवा साथियों के दिमाग में भी उठता होगा कि आज के समय में बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जो हमारे युवा साथी चुन सकते हैं, पर कुछ खास ऐसे उपक्रम भी हैं, जैसे रेडियो जॉकी का एक जो काम होता है वो बहुत ही अच्छा काम होता है, अच्छा माना जाता है, पर उसके लिए ज्यादा अवेयरनेस आज के समय में उतनी है नहीं। तो जो हमारे युवा साथी रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, तो क्या कुछ खास पहला कदम होता है उनके लिए, या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए जिससे वो रेडियो जॉकी बन सके, तो उसके लिए पहले आप हमें बताएं।
6: संचित, सबसे पहले तो आपने ये विषय उठाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
1: देखिए,
6: आवाज का जो जादू होता है वो मतलब उसको हम सुन करके ठगा सा महसूस करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी आवाज को लोग सुने, उसे सराहा जाए। तो मेरी जितने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं, उन्हें मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आवाज को तराशने के लिए उस पर काम करें, बहुत प्रैक्टिस करें। ये वैसा ही है जैसे आप संगीत की साधना करते हैं, जो गीत गायक बनना चाहते हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, या कोई भी फील्ड हो जिसमें स्किल से जुड़ी फील्ड हो, तो वैसे ही इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। खुद पर, खुद के शब्दों पर, खुद के एक्सप्रेशंस पर काफी काम करें। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम ये सब सीख सकते हैं। बहुत सारे रेडियो जॉकी हैं जिन्हें हम सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज भी हैं जिनको हम ज्वाइन करके अपनी आवाज को बेहतर कर सकते हैं और उससे फेमस भी हुआ जा सकता है। देखिए, तरह तरह की फील्ड्स हैं, लेकिन ये ऐसी फील्ड है जिसमें नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, और उतना ही आपको इतना पसंद किया जाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।
1: एक सवाल और यहाँ पर उठ रहा है मन में कि रेडियो जॉकी के लिए जैसे वो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी आवाज पर काम कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए कुछ खास इंस्टीट्यूशन भी है, या क्लासेस हमें मिल सकती है, या यूट्यूब पर हम जाकर इसकी सर्च कर सकते हैं, वो थोड़ा और बताएं विस्तृत में।
6: देखिए संचित, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इंटरनेट की बात कर लीजिए या फिर ऑफलाइन बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉइस ओवर को लेकर के या रेडियो जॉकी को लेकर ट्रेनिंग देते हैं, हम उनसे कोर्सेस ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि हर कोई के बस का नहीं होता है कि वो कहीं किसी दूसरे शहर जाए या फिर इंटरनेट पर पैसा खर्च करके कोई कोर्स ज्वाइन कर ले। तो सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे किफायती तरीका है आप खुद और आपका आईना, ठीक है, अखबार पढ़ें, अखबार जोर जोर

0: पढ़ें,
1: जी
0: अपने वॉइस ओवर एक्टर्स को फॉलो करें, पिक्चरें देखें, गाने देखें, उन लोगों के बात करने के तरीकों को देखें कि वो कैसे किस एक्सप्रेशन में बात कर रहे हैं, उसमें मॉड्यूलेशन क्या है, उसमें डेप्थ कितनी है, उसमें वॉल्यूम कितनी है। देखिए, आवाज के बहुत सारे अलग अलग पैमाने होते हैं जिससे आवाज आपको पसंद आती है। क्यों हमें अमिताभ बच्चन की आवाज इतनी पसंद आती है?
2: सौरभ जी, आपने इस अनछुए पहलू के ऊपर इतनी शानदार हमें जानकारी दी, यकीनन हमारे युवा साथी इससे प्रेरित हुए होंगे और उन्हें बहुत सारी उनके मन में जो प्रश्न थे वो आज उनके उत्तर उन्हें मिल गए होंगे। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया संचित।
3: अभी आप सुन रहे थे रेडियो और वॉइस ओवर की दुनिया विषय पर सौरभ अत्रे से संचित चौकड़े की एक खास बातचीत। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्रम हेलो फ्रेंड्स की ओर। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे पहले कॉलर से। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं।
4: मैं बजरंग चौक गांधवा से संतोष पटेल तिरोले बोल रहा हूँ सर।
3: तिरोले जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
4: अच्छे, खुश हूँ, मंगल हो, क्या हाल चाल?
3: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और अभी मौसम जो खंडवा के ऊपर पूरी तरीके से इंद्रदेव जी प्रसन्न हो चुके हैं और हाल फिलहाल में मौसम वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी भी की है कि खंडवा के अंदर अति वर्षा रेड अलर्ट भी जारी हुआ है, तो क्या कुछ प्रबंध आपने करके रखे हैं इसके लिए?
4: जी जी, बारिश का दौर चल रहा है, बोनी हो चुकी है, पर तोड़ मोड़ हो रही है सोयाबीन की फसल में। बीज के कमजोर होने के कारण तोड़ मोड़ हो रही है। आप डबल से मक्का बोएंगे आप?
3: तो ऐसा कुछ इसका वो रहता है कि अगर ज्यादा वर्षा हो गई तो भी फसल खराब हो जाएगी, और अगर दो पानी गिर गए उसके बाद अगर बारिश नहीं हो रही है तो भी खराब हो जाएगी, उसका क्या कुछ एक समन्वय रहता है?
4: तो उसका कारण है ना, जैसा बारिश लपक के गिर गई तो दाना अंकुरित नहीं हो पाया अंदर से, जमीन के अंदर से, ये उसकी वजह से सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई। फिर आज गाना सुनवा दीजिए, पिक्चर अपने नगीना पिक्चर का गाना सुनवा दीजिए। आज कल कुछ याद रहता नहीं।

0: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: छोटी भोरगांव से बद्री पटेल बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं पटेल साहब आप?
1: भैया जी कहीं नहीं, घर पे रहते हैं, आराम करते हैं।
0: बहुत अच्छी जिंदगी है आराम की आपकी, क्योंकि आराम हर किसी को नसीब नहीं होता है। जो जी, आराम जी, कर रहा है वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति इस जमाने में, आज के समय में।
1: जी भैया सही बात बोली आपने।
0: तो कैसी काम, आप किस प्रकार का काम करते हैं?
1: भैया पहले मैं कपास कारखाने में काम करता था। वो कपास कारखाना बंद हो गया है
0: जी,
1: तो मैंने अभी डॉक्टर के पास आँख की जाँच करवाई थी, तो डॉक्टर बोले इसका मोतिया बिंद पक गया है। बोले
0: अच्छा,
1: अब इसकी आँख की अभी ऑपरेशन करवाऊंगा अभी मैं 15 दिन के बाद।
0: चलिए, तो हम आपके स्वस्थ जीवन की, स्वस्थ आँखों की कामना करते हैं। तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: भैया मुझे अनाड़ी पिक्चर का गीत सुनना है।

0: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: जितेंद्र मालविया
0: जी। मालविया जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं खंडवा से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, खंडवा से ही बात कर रहे हैं। क्या करते हैं मालविया जी आप?
1: मैं टेबल पार्क पे दुकान है अपनी चाट की।
0: अच्छा, तो मतलब आप स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं?

0: बारिश का मौसम चल रहा है तो कई बार बारिश के मौसम में खाने का ज़्यादा मन करता है, पर बारिश के कारण बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, तो ग्राहकी पर कैसा असर पड़ रहा है आपके अभी?
1: जी बारिश में तो ग्राहकी बहुत मध्य जाती है, पानी बहुत जरूरी है सर।
0: तो क्या कुछ ज्यादा पसंद करते हैं बारिश के मौसम में लोग?
1: खास करके पानीपुरी ज्यादा चटपटी चलती है।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे मालविया जी?
1: एक बरसात का गाना सुनूंगा
0: बरसात के मौसम में, बरसात फिल्म का गीत आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: सर जी, मेरा नाम है जगदीश राय गर्ग।
0: जी गर्ग जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मजे में सर, मजे में है, आनंद में।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं सर जी बोल रहा हूँ पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
0: क्या बात है, हिमाचल प्रदेश तो बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। मौसम कैसा है वहाँ पर?
1: मौसम जहाँ का बेहद खुशगवार है, बहुत आनंद आती है, हवाएं चल रही है
0: जी,
1: और बड़ा ही सुंदर नजारे जहाँ देखने को, चाय के बागान।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर आज हम सुनेंगे, हाँ, फिल्म है जी आज और कल।

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं।
1: हाँ सर जी, नमस्कार
0: जी।
1: ध्रुवाराम साहू बात कर रहा हूँ सर, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
0: जी ध्रुवाराम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बहुत बहुत
1: धन्यवाद सर।
0: और कैसा मौसम हो रहा है बालाघाट में हाल फिलहाल में?
1: हाल फिलहाल सर सुबह 7 बजे से बारिश लगातार जारी है सर, और अभी बंद हुई है सर जस्ट 1 बजे।
0: पूरे प्रदेश में जो मानसून के लिए एक तरीके से किसान

0: भाई हमारे जो कह रहे थे कि अभी तक बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, और अब पूरे प्रदेश में एकाएक समान रूप से बरसात हो रही है।
1: जी सर बिल्कुल सर।
0: क्या करते हैं आप?
1: सर अभी तो क्या खेती किसानी काम चालू है सर।
0: देखिए, आप भी किसान हैं, एक तरीके से पूरे साल भर की जो मेहनत होती है, जो आपका प्रयास होता है कि अच्छी फसल आ जाए, वो बरसात पर ही निर्भर करती है या उसके पीछे और कुछ भी चीजें होती हैं?
1: हाँ जी सर, जो मौसम एक प्रकार से होना चाहिए, जिस समय पौधे धान की मतलब फसल रोपाई करना है या फसल उत्पादन लेना है, तो जलवायु का भी बहुत हाथ रहता है सर, मौसम का और जलवायु का।
0: तो अभी आपने बुआई कर दी?
1: हाँ सर बुआई कर दी है धान का, और कुछ थरा रखे हैं सर धान का।
0: कुछ किसान भाई कहते हैं कि जैसे सोयाबीन की फसल धोने लगाई, तो जैसे अधिक वर्षा अगर हो गई तो वो बीज गल जाएगा, तो क्या
1: हाँ
0: धान
1: गल
0: में भी
1: जाएगा।
0: ऐसा होता है कि अगर एक वर्षा के बाद आपने बीज रोपाई की और अधिक वर्षा हो गया तो बीज उसका भी खराब होने की आशंका होती है?
1: हाँ होती है ना सर, क्या है बुआई करते हैं तो उस समय पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में,
0: अच्छा,
1: पानी अगर रुकता है तो नुकसान हो जाता है सर, क्योंकि ना फसल के लिए अनावृष्टि भी नुकसानदायक है और अल्पवृष्टि भी नुकसानदायक है, मध्यम रहना चाहिए तब ठीक रहता है।
0: चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फसल किसी भी प्रकार से खराब ना हो। तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है सर लगान, और गीत है सर, चल मिथो वाला गीत है सर, धरती अपनी है अंबर अपनी है, ये वाली गीत सुना दीजिए सर।

दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा क्रम हेलो फ्रेंड्स से ही संपन्न होता है। इसे सफल बनाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया मनोज सातले ने और प्रस्तुति सहयोग फातिमा लोखंडवाला ने।

0: फ्रेंड्स।
1: दोस्तों अब हम कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं, उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था, खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसका उत्तर है ईरान। हमारा दूसरा प्रश्न था, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका उत्तर है भारत। दोस्तों इसी के साथ अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त संचित को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले

0: सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मीटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी, शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात डेढ़ बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों हर रविवार युववाणी में प्रसारित किया जाता है आपकी फरमाइशी गीतों का क्रम
7: हेलो फ्रेंड्स,
6: जिसमें हम करते हैं आपसे आपके दिल की बातें और सुनवाते हैं आप ही के पसंद के फिल्मी गीत।
8: किसका है ये तुमको इंतजार में होना?
6: तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से कॉल कीजिए और सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीत। साथियों हेलो फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग की जाती है हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच। आकाशवाणी खंडवा का टेलीफोन नंबर है 2226063 और खंडवा का STD कोड है 0733।
7: तो फोन करना ना भूलें, कार्यक्रम है

0: पीछे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।
3: जिस

0: अरे बैना उनी काई हुई गयो ज।
1: हम सुनी रहे आज आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन।
2: न आज तो निमाड़ की सुरीली धड़कन सुनी खना।
3: मजा आ गया।
4: सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
5: दिल से दिल तक पहुंचती आवाज आकाशवाणी खंडवा की।

0: तू है तो
1: हम हो चुके आपकी। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमार की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
2: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
3: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
2: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
3: क्यों,
2: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
3: वो कैसे?
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
3: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
2: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
3: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
2: आप कब आ रहे हैं?
3: आकाशवाणी खंडवा पर।
4: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: दीदी नौकरी लग गई।
7: अरे वाह, बधाई हो।
8: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
6: हाँ दी, नया मोबाइल।
8: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
6: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
8: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
6: पर दीप,
8: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
6: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
8: अच्छा।
9: RBI कहता है
10: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में डिफेंस प्लांट का शिलान्यास किया। VBG रामजी अधिनियम के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। और प्रदेश भर में मॉनसून हुआ सक्रिय, आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे

0: एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है।
1: आज ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2500 करोड़ से 3000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, यहां पर रोजगार भी मिलेगा और मिसाइल भी 1000 किलोमीटर लंबी वाली, जिस प्रकार से उन्नत प्रकार की जो चीजें हो सकती है वो सब होकर के साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 सांदीपनी विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए 2 पुल सड़क अलग अलग प्रकार के निर्माण कर, इसी के साथ साथ यहां भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कि यहां हमारा अंदर का 4 लेन बने जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज यह शुभ शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में बनाए जाएंगे।
2: आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई। 1500 से 2000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2500 से 3000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है जो आज शिवपुरी में संभव हो पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सदगड़ी में विकसित किए जा रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लगभग 173 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह पार्क औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार बनेगा। परियोजना में आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, उत्कृष्ट सड़क एवं परिवहन संपर्क, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स तथा भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे निवेशकों को विश्व स्तरीय औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हो सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR एवं मतदाता सूची के परिशोधन का कार्य अत्यंत पारदर्शी, सुलभ और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया है। आज इंदौर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संवाद के दौरान कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया विश्व की सबसे पारदर्शी और विश्वसनीय प्रक्रियाओं में से एक है। इसी पारदर्शिता और दक्षता के कारण भारत आज विश्व के 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संगठन इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र की उन्नति, समाज के विकास और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां

हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिला अधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। इंदौर शहर को पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत कुल 150 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से पहले चरण में 10 बसों का संचालन ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। धार में खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी में प्रवेश हेतु तीरंदाजी के खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। इसमें 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित सरकारी गोचर भूमि से लगभग 100 से अधिक झोपड़ियां, कच्चे मकान तथा गुमटियों को बुलडोजर के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की गई। नर्मदापुरम में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाए। इंदौर में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा कल एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 250 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जबलपुर शहर में ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0 के तहत आज सिविल लाइन थाना पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: हाँ, फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: FM बैंड 101.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा। अब सुनते हैं सुगम संगीत।

0: यह आकाशवाणी है। आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द फाइनल टी20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ऑफ द आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: नमस्कार, फर्स्ट बॉल 20 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुनीश जॉली और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम एक बार फिर से पहुंच रहे हैं इंग्लैंड के लंदन में और वहां लॉर्ड्स का मैदान इंतजार कर रहा है। एशेज की पुरानी राइवलरी कह लीजिए जो टी20 क्रिकेट में आ गई है, या फिर दिग्गज टीमें जिनको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, एक होम टीम है इंग्लैंड और दूसरी ऑस्ट्रेलिया और आज विमेन्स वर्ल्ड टी20 का फाइनल है लॉर्ड्स में। मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद है।
4: ओ मनीष, आई मस्ट टेल यू द पैल्पिटेशन इज रियली हाई बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज लिटिल हिट एंड मिस। वी आर मिसिंग इंडिया एट द मोमेंट बट राइट नाउ वी विल ओनली टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया प्योर डोमिनेंस सुपर ओरा एंड टुडे बिकॉज इट्स लॉर्ड्स लॉट मोर टू हैपन बट वी हैव मच मोर टू टॉक अबाउट इन द स्टूडियो बिकॉज वी हैव आर सुपर सुपर एक्सपर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चेतन शर्मा, फॉर्मर इंडियन फास्ट बॉलर एंड नीडलेस टू से 1987's वर्ल्ड कप हैट्रिक हीरो, द मोस्ट लव। चेतन, वेलकम टू द स्टूडियो।
5: थैंक यू।
4: ऑल्सो वी हैव वैशाली माथुर, इंडिया फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। वैशाली, यू ऑल्सो हैव अ लॉट टू टॉक, राइट?
6: या
4: जी, बहुत सारी बातें आपसे स्टूडियो में करने वाले हैं। स्वागत है आपका। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बाय एनी मीन्स मोना पार्था सर।

0: the senior sports journalist. Welcome again. We have a lot more to talk about game and what exactly are the nitty-gritties, and you're the best person to talk about it.
1: Thank you.
2: बहुत बहुत स्वागत है चेतन भाई. आप ही से शुरू करते हैं. वर्ल्ड कप का एक और फाइनल लॉर्ड्स लॉर्ड्स की बात करते हैं. 1983 वर्ल्ड कप भूलता नहीं इसलिए जिक्र कर रहा हूं. लेकिन आज का मैच कैसे देखते हैं आप?
3: देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो आप रिवलरी की आप मतलब जितनी बड़ी बात कर लें उससे कम होगा. इंडिया पाकिस्तान की आप बात करते हैं उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं. लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंग्लैंड अपने घर में कोई वर्ल्ड कप का मैच अभी तक हारा नहीं है और ये एक ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर मैच अगर तीन मैचेस खेले गए हैं लॉर्ड्स में दो टीमों ने चेस करते हुए मैच जीता और एक टीम ने डिफेंड किया है और वो टीम कौन सी है? इंग्लैंड. तो बहुत चीजें हैं जो इंग्लैंड के पक्ष में जाती हैं. आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते लेकिन दोनों अनबीटन साइड्स हैं यहां हमारे सामने. जो अच्छी क्रिकेट आज खेलेगा ये ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा.
0: वैशाली बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके बारे में बात करना वाकई जरूरी हो जाता है. सबसे पहली बात है जैसे चेतन ने कहा बहुत ही स्ट्रांग टीम है. एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है. हमेशा हम बात करते हैं कि कौन सी टीम भारी रहने वाली है दूसरी टीम के ऊपर. ऑब्वियसली मुनीश उसके बारे में और भी बातें करेंगे लेकिन इससे पहले आपको लगता है हमारी दोनों टीम्स जो हैं उनके कैप्टन पहुंच चुके हैं ग्राउंड में. देखते हैं टॉस में क्या हो रहा है.
4: Defoes, I have match referee G.S. Lakshmi alongside our captains in Nat Sivabrunt and Sophie Molyneux from England and Australia respectively. Nat, you have the coin.
5: Heads.
6: Heads is the coin. It's heads.
5: We'll have a bowl.
4: Heads it is. Australia has won the coin toss. Soph, what are Australia going to do?
5: We're going to have a bowl. Beautiful day out here and yeah, we want to get out here, have a run around and hopefully put some pressure on them early.
4: It's a very Australian way sometimes to set and put runs on the board. Did you have a big conversation about what to do first?
5: There's been a lot of discussion around it, but at the end of the day, you sort of have to go with your gut. I don't think the pitch will change too much.
4: At the start of the tournament, it was a Phoebe Litchfield watch. It turned into an Elise Perry watch with the Accord awareness. Is Perry playing any other changes to the side?
5: We've got no changes. So, yeah, Pez pulled up really well from her training yesterday. And, very excited to come out here.
4: I read the other day that your childhood dream was to come to this ground with your dad and watch a test match. You're now here. I know he's in the stand as well. And you're captaining Australia. That's got to beat that, doesn't it?
5: Oh, it sounds pretty wild, to be fair. But, special day.
4: And five-day gap, did you sort of just allow the players a little bit of time off just to freshen up the mind a bit?
5: Yeah, the girls got a couple of days off. Went across town from south of London to north and, started training over the last couple of days. So we're in a really good place.
4: We'll enjoy everything that is a final.
5: Thanks, Go Josie.
4: Matt, if it had fallen your way, would have things been different?
7: I was going to bowl as well, actually. It's a fresh wicket. Runs on the board in a final is no bad thing, so happy to be sitting here batting first.
4: You've kept a pretty consistent team right throughout this tournament. Any changes from the semi-final win against South Africa?
7: No, we're unchanged.
4: Stick with that as well. Talk to me about your squad, and I'm not talking so much players, but just experience. Charlotte Edwards, captain a team on this ground in 2009, Heather Knight did it in 2017. If you sort of lent on them for experience, are you sort of thinking to yourself, I'm doing it my way?
7: It would be silly of me not to lean on that experience and then try and add my own little spin on it. I think the whole group throughout this tournament has obviously experienced different grounds, different conditions, different pressures, and we've produced some really good cricket along the way. So, hopefully we can do the same again today.
4: What wins it for England today?
7: One more run than the opposition, I suppose.
4: As simple as that. All the best. Go well, Nat. Australia have won the coin toss today and they're going to bowl first in the final.
2: आकाशवाणी में अब एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले बोलिंग करने का फैसला किया है. गर्मी बढ़ रही है लंदन में. विंबलडन हो चाहे लॉर्ड्स हो, पंखे निकल कर आ गए, उसी गर्मी को हम यहां पे कायम रखते हैं. वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे, टॉस जीता, आपने सुना दोनों कप्तानों ने कहा कि हम टॉस जीते तो चेज ही करते, आपके विचार?
1: इस पिच पे अगर देखें ना तो ये 75% ऑफ बैटिंग पिच है एंड 25% बॉलिंग पिच है. अगर बॉल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में मीडियम पेसर को काफी स्विंग में फायदा देगी लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी वो स्पिनर्स पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो मुझे ये लगता है कि इस पिच पे 180 प्लस का स्कोर जरूर देखेगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने. एंड उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बॉलिंग के ऊपर. एंड दे नो कि जिस तरह से बॉल, हम कहते हैं कि बॉल रिएक्ट करती है धीरे धीरे, वो

0: धीरे धीरे वो कम उसकी स्विंग एंड वो सब कम होता जाता है, तो वो स्पिनर पे ज्यादा फोकस करती है. तो आई थिंक इस यही एक बेनिफिट की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है.
1: ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अपने कॉलर्स को बता दें कि अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले हमारे दिग्गज खिलाड़ी चेतन शर्मा मौजूद हैं, मोना पार्थसारथी मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद हैं जो टेलीफोन रिसीव करेंगे. तो टेलीफोन नंबर्स मैं जल्दी से बता देता हूं. हमारे नंबर्स हैं 2342-1084, 2342-1085. दिल्ली का कोड है 011, उसे लगाना बिल्कुल ना भूलें. 2342-1084, 2342-1085. गीतांजलि
2: जी, मनीष, बहुत सारी बातें इनफैक्ट हमारे कॉलर्स हमसे करना चाहते हैं, जैसा नंबर आपको बताया उन नंबर्स पे आप जरूर कॉल करें. मुना, बहुत सारे फैक्टर्स इनिशियली मैं कह रही थी चर्चा जरूर करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले पिच की बात करें. लाइक वैशाली कह रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है उन लोगों को जो स्टार्ट पहले कर रहे हैं बैट करने से, राइट. लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट व्हाट पिच इज गोइंग टू डू, इट वाज ऑलवेज लाइक बिकॉज इंग्लैंड का होम ग्राउंड है और इंग्लैंड ने अभी तक यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारा है, उनको ये एज मिलेगा? मिलेगा
3: इंग्लैंड को न सिर्फ मैदान का एज मिलेगा, बल्कि आप कहीं भी देखिए जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान इतना बड़ा है और उसमें पूरा होम सपोर्ट इंग्लैंड को मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. और उसके अलावा पिच की जो आप बात कर रहे थे, तो 158 एवरेज स्कोर रहा है इस पिच पर और हमेशा चेस करने वाली टीम जैसे चेतन सर बोल रहे थे यहाँ जीतती है और उनको फायदा मिला. इसीलिए दोनों कैप्टन्स ने भी ये कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी शायद चेस करना पसंद करते. और काफी ही रोचक मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की अगर हम अभी तक का जो उनका सफर रहा है उसकी बात करें तो एकदम बराबर नजर आती हैं. इंग्लैंड पिछले 2 साल में 18 महीने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म टीम नजर आ रही है, तो काफी एक मुझे लगता है रोचक मुकाबला रहने वाला
2: जी. और अभी रोचक बात यह है, कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और उम्मीद करते हैं पहले कॉलर एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से. नमस्कार
4: जी. नमस्कार
2: जी, नाम बताइए अपना.
4: जी, मैं गुजरात सराज से अशोक नाई बात कर रहा हूँ.
2: जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
4: देखिए मैम, मेरे ख्याल से सोफिया डंकली को मौका नहीं देना चाहिए मेरे समक्ष से परे, और क्या कितना टोटल होना चाहिए अगर जीतना है तो इस मैदान पर?
2: जी, टोटल की चर्चा जरूर करेंगे. सोफिया के सिलेक्शन से खुश नहीं है सुचेतन. वी विल हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो चेंज मेड बाय एनी टीम, सो व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट द टीम?
5: देखिए, दोनों अनबीटन साइड्स हैं और जब आप जीतते आते हैं तो हर समय ये कहा जाता है कि ज्यादा बदलाव ना करेंगे तो अच्छी बात है आपकी टीम के लिए. और टॉस के समय अगर आप दोनों कैप्टन्स का रिएक्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहती थी, उनके सोच में ये है कि आप फील्डिंग करें. बट मैं हर समय ये कहता हूं कि इतने बड़े मंच पे आकर जब आप रहते हैं ना, रन्स ऑन बोर्ड हर समय आपकी मदद करता है इस प्लेटफॉर्म पे आकर. और इंग्लैंड की कैप्टन की भी यही सोच थी कि ठीक है हम टॉस हार गए लेकिन रन्स ऑन बोर्ड हो सकता है कि ये प्रेशर में डाल दे, क्योंकि ये प्रेशर गेम रहेगा. आपके सपोर्ट, जो कहते हैं ना, सपोर्ट इंग्लैंड को रहेगी, क्राउड आपके अगेंस्ट रहेगा, आप चेस कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं इस समय, तो चीजें अच्छी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए इफ इंग्लैंड गेट अराउंड 170-180. देखिए 150 पे कुछ नहीं होगा, 150, ये ग्राउंड ऐसा है कि इट्स ए ब्यूटीफुल विकेट. इसके ऊपर हम देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी इसी ग्राउंड पर हुआ था. 170 रन्स एक ओवर पहले चेस कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, और लास्ट 10 ओवर में उस समय गीतांजलि 107 रन थे, स्टिल वन ओवर टू स्पेयर, देयर फिनिश द गेम. तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है ये विकेट कितनी अच्छी है. तो इसलिए 170-180 ऑन अ फाइनल गेम विल बी अ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली.
2: चेतन, अभी तक 186 हाईएस्ट स्कोर रहा इस ग्राउंड पर.
5: 180 बना दीजिए.
1: राइट देन वैशाली, तो आपने जो अनुमान लगाया 180-85, उसके पास मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी टीम जो है वही यही सोच रही होगी. बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पे एक प्लेयर है एशली गार्डनर, उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूं. शी इज बीन एन ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द मैच पिछले गेम में. हाउ गुड इज ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, एशली गार्डनर के बारे में हम शक नहीं कर रहे, लेकिन वॉट डेप्थ है उनके बैटिंग में भी, बोलिंग में भी, अगर हम देखें क्या खास आपको दिखता है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं?
0: देखिए, उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं. एलिसी पेरी, वो एक ऐसी ऑलराउंडर है जो आपके मीडियम पेसर में ही सिर्फ बॉलिंग में ही फायदा नहीं देती, आपको बैटिंग भी करके देखती है. और उनका ये खासियत, उन्होंने 170 स्कोर जब हुआ था इंडिया के अगेंस्ट और वही वहां पे खड़े होकर उन्होंने बैटिंग भी की थी उस टाइम पे, तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सपीरियंस प्लेयर का. और एलिसी पेरी वो प्लेयर है जो WPL में भी बहुत अच्छा करके गई है, एंड उसकी वजह से वो काफी बेटर इंप्रूवमेंट इंपैक्ट पड़ता है एक टीम पे, तो ये एक फायदा है. और दूसरा मैं ये कहूंगी कि

0: इंग्लैंड के पास एक बेनिफिट ये है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, एंड उसके साथ उन्होंने इसी ग्राउंड पे इंडिया के साथ मैचेस खेले हैं, सीरीज खेली हैं, और वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया उनके बैटर और बॉलर्स ने।
1: मोना, आपसे एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहूंगा, यहाँ अली से पेरी के बारे में बात हो रही है, आपने कभी देखा कि सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट होके विमेंस क्रिकेट में एक प्लेयर को बाहर बुला लिया क्योंकि फाइनल गेम तैयारी कर रहे हैं?
2: जिस तरीके से सेमीफाइनल में वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गई थी तो लग रहा था कि पता नहीं फाइनल खेल पाएंगी या नहीं, लेकिन पिछले दो प्रैक्टिस सेशन में वो नजर आई और उससे लग गया था कि इतना बड़ा मैच है वो इस मैच से अलग नहीं हो सकती। और कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि वो पूरी तैयारी कर रही हैं, सारा कुछ जतन उन्होंने कर लिया है कि किसी तरह से उनको ये फाइनल खेलना है। सेवेंथ, अभी तक वो छह बार जितना ऑस्ट्रेलिया जीती है, उन्होंने काफी अच्छा सफर देखा है। और 2023 से जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है और उनको बाहर रखने का मुझे नहीं लगता जोखिम ऑस्ट्रेलिया ले।
3: और एक जोखिम हम कभी नहीं ले सकते, हमारे कॉलर्स को बाहर रखने का। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार।
4: हेलो
3: जी, नाम बताइए अपना।
4: चेतन शर्मा जी नमस्कार।
5: नमस्कार जी।
4: नमस्कार, आप आ गए तो मेरा बहुत खुशी हो जाता साहब, मैं 1970 से कमेंट्री सुन रहा साहब।
5: नहीं आप, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे, आपका टेलीफोन कब बजेगा।
4: साहब आप शारजा में एक बार मैच हो रहा था जब क्या हुआ, आप हैट्रिक नहीं है मेरे को याद है अभी तक।
3: जी सभी को याद है हैट्रिक।
4: और एक मैच में जावेद मियां आपका बॉलिंग में लास्ट में छक्का मार के मैच विन हो गया था साहब।
5: जी जी जी जी,
3: बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरीज।
4: आप आते में वही याद आता साहब के रमेश हैदराबाद उस्मान गेंद।
5: आज वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं और छोड़ देते हैं सभी को।
1: जी वो मेरे ख्याल से वो कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन
3: एक्साइटमेंट
1: जस्ट आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शारजा की बात की, गर्मी याद आ गई। अब आपने 86 में टूर किया था, घातक स्पेल डाला था इंग्लैंड में, तब का मौसम इतना चेंज हो गया पाजी, प्लेयर्स कैसे अडेप्ट कर लेते हैं इन गर्मियों में और इन टेम्परेचर चेंजेस?
5: देखिए कभी आप सोच नहीं सकते कि अगस्त सितंबर में इंग्लैंड में डे नाइट क्रिकेट होगी। आज के समय में देखिए डे नाइट क्रिकेट आप खेलते हैं, वहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसा टेम्परेचर में बदलाव हुआ, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें टेम्परेचर में बदलाव है। इस विकेट के ऊपर मैं बात करूंगा, इन दोनों टीम्स की बात करूंगा, 9.2 पूरे टूर्नामेंट में 9.2 पर ओवर के हिसाब से इंग्लैंड ने रन्स बनाए हैं, 9.4 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने रन्स बनाए हैं। यहां पर एडवांटेज अगर हम, मैं मनीष और गीतांजलि बात करूं, एडवांटेज किस पक्ष में जाता है, वो जाता है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने 6.2 पर ओवर इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। देखिए आपको मैचेस कौन जिताएगा, मैचेस आपको T20 क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आपको गेंदबाज, आप 200 रन बना देंगे, आपके गेंदबाजों में दम नहीं है तो 200 रन ऑपोजिशन चेस कर लेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इकोनॉमी देखें गेंदबाजों की 6.2, तो ये थोड़ा एडवांटेज आता है। लेकिन वो एडवांटेज तब आता आपके पास ज्यादा अगर मैं कैप्टन होता, कि जब मैं पहले बल्लेबाजी करके 180-190 ऑन बोर्ड लगाता और दूसरे को चेज करने देता, क्योंकि मेरे गेंदबाजों की जो इकोनॉमी रेट है वो 6.2 है। या तो आप ऑस्ट्रेलिया जाए और 6.2 से रोकने की कोशिश करें, इसका मतलब 140 के आसपास आप इंग्लैंड को रोकने की सोच रहे हैं, अगर मैं आपके आंकड़े देख रहा हूं। तो लेट्स सी व्हाट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डू नाउ।
3: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मोना, अगर आप दोनों टीम को एनालाइज करें तो जो इंग्लैंड ऑफकोर्स एक होम ग्राउंड का तो उनके पास एडवांटेज है, लेकिन वो बहुत रिलाय करते हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं उनका प्लेइंग स्टाइल। जहां ऑस्ट्रेलिया को देखो तो बहुत ही अच्छी कलेक्टिव, एक बहुत ही स्ट्रांग टीम नजर आ रही है, तो ये एक एडवांटेज तो ऑस्ट्रेलिया के पास बाय डिफॉल्ट है। प्लस ऑब्वियसली वॉल ने भी 101 रन बनाकर नंबर वन क्रिकेटर बन गई हैं, सो वो भी बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है ये।
2: देखिए अभी बहुत बातें हो रही थी कि जब इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा डैनी वेयर्ट पर डिपेंड करती है, लेकिन आपने सेमीफाइनल में देखा 3 विकेट गिर गए थे उनके 23 रन पर, और उसके बाद जिस तरीके से नेट सीवर ब्रंट ने या हीटर नाइट ने जिस तरह की पार्टनरशिप की और जो टीम को जीत तक ले गए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 2017 की टीम थी जिसने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उसमें से कैप्टन और हीटर नाइट और डैनी तीनों प्लेयर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप का, वो कहते हैं ना बीन देयर डन दैट, तो वो वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव उनके पास है। और यहाँ एक और बात रोचक है कि जो इनकी कोच है चार्लोट एडवर्ड्स, 2009 में जब पहली बार इनॉग्रल जीता था वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने, एकमात्र जो जीता है अभी तक, उस समय वो उस टीम की प्लेयर थी, तो उनको अनुभव है कि कैसे जीते जाते हैं वर्ल्ड कप। और वही जिस टीम को उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया की, उसकी जो प्लेयर थी शैली निशके, वो भी ऑस्ट्रेलिया की कोच है, तो कोच

0: का भी एक अलग ही मुकाबला यहाँ चल रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ता है।
1: वी आर हैविंग अ लवली डिस्कशन हियर बिकॉज यू नो बहुत अच्छा पैनल हमारे पास है एंड वी आर जस्ट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फाइनल। आकाशवाणी में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20। हमारे साथ चेतन शर्मा मौजूद है, मोना पार्थ सारथी मौजूद है, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद है, गीतांजलि भी रनअप ले रही है, वो थोड़ा सा रनअप ले रही है। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ वैशाली, हमने स्टैट्स की बात कर ली, ऑन ग्राउंड आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लैंड को ठीक है रन तो बनाने, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रेंथ आपको इन दोनों टीमों में किसकी ज्यादा दिख रही है, पहला सवाल ये, और दूसरा ये कि इंग्लैंड की तरफ से ऐसा क्या उनको पावर प्ले में या स्लो गोवर्स में अलग करना पड़ेगा जिससे वो आगे हो जाए।
2: इंग्लैंड में नेट सीवर अभी इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रनर है, जो उनके ज्यादा रन्स है, तो उनके पास ये एक बेनिफिट है इंग्लैंड टीम के पास। एंड उनके पास एक डैनी वॉट है जो ओपनर आती हैं एंड जो पावर प्ले में वो एग्रेसिव प्ले करती हैं वो शानदार है, काबिले तारीफ है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी बैटर बहुत जबरदस्त है, बेथ मूनी है उनके पास, जो उनकी कंसिस्टेंसी काफी बेटर है। इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने काफी अच्छा खेला है और बाकी

0: बेनिफिट है इंग्लैंड टीम के पास, एंड उनके पास एक डैनी वॉट है जो ओपनर आती हैं, एंड जो पावर प्ले में वो एग्रेसिव प्ले करती हैं वो शानदार है, काबिले तारीफ है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी बैटर बहुत जबरदस्त है, बेथ मूनी है उनके पास, जो उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बेटर है। इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है और बाकी मैचेस में भी उन्होंने काफ़ी बेटर करते हुए दिखाई दिए हैं। तो दोनों टीमों में आज जो बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों टीमें अच्छी करती हैं, लेकिन जो फील्डिंग जो मेन पार्ट है वो है फील्डिंग। आप फील्डिंग कितना अच्छा करते हैं वो ज्यादा मैटर करती है।
1: ऑलराइट, इससे पहले कि गीतांजलि अपनी रनअप के साथ आए और एक अगला सवाल पूछे, भारतीय रिप्रेजेंटेशन भी है इन दोनों टीम्स में। पाजी, आईपीएल में लगभग सारी प्लेयर्स जो हैं इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की, आईपीएल में कहीं ना कहीं किसी टीम से वो लोग खेल चुकी हैं, सो वो एक तरह का इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है।
2: जी, और रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं तो दोनों कैप्टन्स की, चेतन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एनालाइज करें दैट बोथ द कैप्टन्स, इंग्लैंड की जो हेथन नाइट है और ऑस्ट्रेलियन की नए कैप्टन है सोफी, इनमें से किसकी कैप्टनसी आपको बहुत इफेक्टिव लग रही है?
3: देखिए दोनों टीमें अनबीटन आई हैं अभी तक, और अनबीटन जब आती हैं तो ऑब्वियसली बोथ कैप्टन्स हैव डन वेल। अभी मनीष ने जो क्वेश्चन पूछा था ना किसके ऊपर इंग्लैंड रिलाई करता, मैं कहूंगा ओपनर्स के ऊपर, बिकॉज दे आर वेरी एक्सप्लोसिव। और अगर एक चांस इंग्लैंड के पास बनता है वो बनता है कि आप पहले 6 ओवर्स को कैसे भुनाते हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, एक्चुअली मेरे साथ डिबेट हुआ है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 7 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं। मैं हर समय एज ए बॉलर मानता हूं कि पहले 6 ओवर्स हर समय इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बिकॉज दैट विल टेक अवे द गेम फ्रॉम यू। देखिए कैप्टन्स का रोल कैसा होता है गीतांजलि, जो आपने बोला कैप्टन, कैप्टन तो सभी बनते हैं, लीडर कौन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम को कौन लीड करता है, जो परफॉर्म करेगा। और अभी तक मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हैज डन ए ग्रेट जॉब, बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स और नॉकआउट गेम्स देखें ना, वेस्ट इंडीज को कैसे धाराशाही किया, वो कॉन्टेस्ट नहीं रहना देते हर समय, दे जस्ट फिनिश द ऑपोजिशन। जैसे नॉकआउट स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया आती है दे नेवर वॉन्ट की कॉन्टेस्ट रहेगा, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर टफर व्हाट इंग्लैंड आर, बट इंग्लैंड के जो रिकॉर्ड्स, अभी मैम भी बोल रहे थे कि दे आर अनबीटन वर्ल्ड कप में, आज तक इंग्लैंड में हारे नहीं, होम सपोर्ट होगा, अपनी विकेट्स को जानते हैं, थोड़ा सा होम एडवांटेज रहता ही है आपको, तो इट्स गोइंग टू बी अ कंटेस्ट। बट मैं सिर्फ चाहता हूं बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 180 रन बना दे, एंड आई वांट टू सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग दैट।
1: और चेतन भाई आप कह रहे हैं कि 180 विनिंग स्कोर होने वाला है,
3: देखिए हो सकता है, देखिए आप यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलियंस, नंबर 10 तक बैटिंग करते हैं वो, और जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ की, मुझे तो, मैं भी था यही स्टूडियो में था उस दिन, में मुझे लग रहा था एक तरफा इंडिया मैच जीतेगी, और मैच ऐसे गया हाथ से कि मतलब आप पूछ नहीं सकते। तो ऑस्ट्रेलिया गॉट अ डेप्थ एंड ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी टफ, स्पेशली इन नॉकआउट गेम्स।
1: हमारे हाथ से कॉलर ना चले जाए,
2: बिल्कुल वो टफ कॉलर हमारे साथ हैं अभी तक, उनसे बात करते हैं। हेलो
4: हेलो, नमस्कार मैम।
2: नमस्कार जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना।
4: मैम मेरा नाम उमाशंकर सिंह है, मैं यूएसपुर किसी से बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी
4: मैम, जितने भी अभी तक सब लॉस में मैच हुए हैं, जैसे चाहे वो
2: जी, अगर आपने अभी तक हमारा शो सुना है लगातार और आप फोन करने में बिजी नहीं थे तो इसकी चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल, दोनों टीम्स हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं लगातार कि हर एक के पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ उस पे चीजें वर्कआउट होंगी, बाकी तो आप जानते हैं जो क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है, हमेशा हम यही कहते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 2020 और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं चेतन शर्मा हमारे साथ, मोना पार्थसारथी हैं और हमारे साथ हैं वैशाली माथुर, मैं हूं गीतांजलि सोनी और मेरे साथ हैं मुनीश चौली।
1: मोना, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दो दिग्गज टीमों को देखते हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एनालिसिस करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे, सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर स्क्रिप्टिंग यू नो अ मैच लाइक दिस बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड।
5: मुनीश जी, कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट बॉल में पूरा इंट्रो बदलना पड़ता है, पूरी कॉपी चेंज हो जाती है, ऐसे भी कई बार हुआ है, और तब अगर इंडिया का मैच नहीं है तो कभी चाहे कोई कितना भी बोले कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे गेम को एनकरेज करें, लेकिन जहां इंडिया एंगल आता है थोड़े से हमारे भी इमोशंस आ जाते हैं उसमें, लेकिन अब यहां तो आपको तटस्थ होके देखना है कि कौन टीम कैसा खेल रही है। और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा क्रिकेट अब होने लगा है ना कि सब एक दूसरे के खिलाफ काफी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको वर्ल्ड कप में ही दो दिग्गजों की टक्कर देखने को मिल रही है। और अभी जैसे चेतन सर कह रहे थे कि ज्यादातर सारे

0: प्लेयर्स जो हैं वो हम WPL में इनको देखते हैं,
1: जी
0: तो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि आप कुछ एक दिमाग में प्रिजिडिस लेके बैठेंगे कि हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आने के बाद सामने कोई कंटेस्ट रहने नहीं देती दूसरी टीम पर, एक साइकोलॉजिकल गेम भी उनका चलता रहता है लगातार, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि आपस में इतना आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है कि सब एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानते हैं और जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, और कभी कभी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है।
2: जी वैशाली, एज अ क्रिकेटर बहुत सारे मोमेंट्स आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे, अभी जो कंडीशन चल रही है आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम भारतीय टीम की भी बात करेंगे, बहुत सारे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे इस बारे में, लेकिन अभी जो टीम है, आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एक अलग जज्बा आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में नजर आता है, क्या कारण है? आप देखा जाए तो हमारी भी भारतीय टीम वो बहुत ही ज्यादा सशक्त टीम है, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि मिस कर गए और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम के पास वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मौजूद है?
3: इंडिया के बाद मेरी तो सबसे फेवरेट है, उसके बाद इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम, एंड ऑस्ट्रेलिया टीम में हम कह सकते हैं कि उनका जो फिटनेस लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है, वो कहीं और हम अगर किसी कंपेयर करें किसी भी टीम से तो वो उतना हाई लेवल पे नहीं है। एंड उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो उनके पास टॉलर बॉलर्स हैं, आप देखिए कि हमारे पास एक झूलन गोस्वामी थी, और टॉल का जो निप मिलता है ना बॉल को वो डिफरेंट होता है, वो बॉलर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो आउट होने के कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं उनके, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया टीम एंड उनके पास एक कंसिस्टेंसी है, वो जितने मैचेस वो खेलते हैं उतना मुझे लगता है कि एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया उतने मैचेस वो नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि 25% कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं मैचेस के लिए, तो एक ऑस्ट्रेलिया टीम के पास एक बेनिफिट है। एंड उनकी जो हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो ट्रेनिंग अगर हम देखें तो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वो बेटर है, चाहे वो आप इंग्लैंड ले लीजिए या साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास एक बेनिफिट है।
1: पाजी बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे हमारी कमेंट्री टीम के पास और दो दिग्गज कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आई नो बहुत अर्ली पूछ रहा हूं, लेकिन प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि विनर कौन होने वाला है?
4: देखिए मैं तो आंकड़ों के साथ जाऊंगा, मैं आंकड़ों के ऊपर देखता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस स्टेज पर आकर तीन बार मतलब मात दी है, 2012, 2014, 2018 इंग्लैंड को मात दी है फाइनल्स में आकर, तो मतलब इतनी पिटाई के बाद तो मनोबल नीचे रहता है, तो लेट्स सी, दैट्स व्हाई आई वांटेड इंग्लैंड टू गेट टू 180 एंड आई वॉन्ट सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग इट, तो मैं इस मैच को एक कांटे वाला मैच देखना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि 6.2 इकोनॉमी रेट की वजह से 140-145 में रह जाए इंग्लैंड, तो इट वोंट बी अ कंटेस्ट, आई वॉन्ट इंग्लैंड टू स्कोर 180।
1: मोना, क्योंकि इशारा हो गया प्रोड्यूसर साहब का हमको जाना है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि एक शब्द आपको बोलना है इंडिया और सॉरी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, मेरा पेट्रियोटिज्म आ गया इंडिया के नाम।
0: हाँ बिल्कुल, हम सबके मन में आज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया।
1: ऑस्ट्रेलिया, राइट, वैशाली बता चुकी हैं, तो मैं मुनीश जौली, गीतांजलि सोनी के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ ट्यून्ड इन थे, और आपने सुना ये प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20, और सीधा चलेंगे लॉर्ड्स लाइव कमेंट्री के लिए हमारी टीम के साथ।
5: फर्स्ट बॉल 20,
1: तो आइए चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम के पास, दिग्गज कमेंटेटर्स हिंदी में विनीत गर्ग, अंग्रेजी में प्रकाश वाकणकर, स्कोरर है भूपेंद्र सिंह भाटी, और स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा। ओवर टू आवर कमेंट्री टीम।
6: नमस्कार, स्वागत है क्रिकेट के इस महाकुंभ में। आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है, और ये फाइनल मुकाबला है, और किसके बीच में? पुराने जाने माने प्रतिद्वंदी, कांटे का मुकाबला हमेशा होता है जिनके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड। लॉर्ड्स का यह मैदान जो क्रिकेट का मुख्यालय है, और पहली सूचना जो आपके पास अब तक पहुंच चुकी होगी, दोनों ही टीमों में सेमीफाइनल में जो टीमें खेली थी कोई परिवर्तन नहीं है, और दोनों विजय रथ पर सवार हैं। क्यों होगी टीम में कोई बदलाव या परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही अब तक अविजित हैं इस टूर्नामेंट में, और ऐसे में इंग्लैंड जो कि कभी भी इंग्लैंड में किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप हो तो हारा नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को उसने कभी किसी भी फॉर्मेट में ICC टूर्नामेंट के फाइनल में हराया नहीं है, तो ये एक अजीब सब समा बंधा है यहाँ पर, और सब उत्सुक हैं, सब चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले, और यहाँ जो चार ऑफिशियल्स हैं उसमें से आज दो भारतीय हैं। चर्चा जारी रहेगी। पिच नंबर 10 जिसपे थोड़ी सी घास है, नीचे से

0: वो काफी सूखी हुई नजर आ रही है। स्ट्रेट बाउंड्रीज 70-71 मीटर की हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज लगभग 60-65 के आसपास की हैं, और क्योंकि पिच नंबर 10 है और मैदान पर 20 पिचेज हैं तो लगभग लगभग सेंटर पिच है, तो ऐसा नहीं है कि एक और स्क्वायर थोड़ा छोटा हो जाए। सबसे छोटी बाउंड्री 58 फुट के आसपास की है। जब विकेट के पीछे की ओर खेलते हैं तब स्वाभाविक है कि वो उस ओर की बाउंड्री कम हो जाती है। तो टीमें मैदान में आ रही हैं, राष्ट्रीय गान हो चुके हैं दोनों देशों के, और यह महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। प्रकाश मेरे साथ हैं और आप उत्सुक होंगे कि उनके क्या विचार हैं, और ये लॉर्ड्स है और लॉर्ड्स के स्लोप की हम बात करते रहेंगे। स्वागत करता हूं प्रकाश वाकनकर।
1: थैंक यू विनीत एंड गुड इवनिंग वेर एवर यू आर लिस्निंग। इट्स अ बिग डे एट लॉर्ड्स वेयर द T20 वर्ल्ड कप फाइनल बिटवीन द ओल्ड राइवल्स एज विनीत हैज डिस्क्राइब्ड इज गोइंग टू बी प्लेड, एंड वन ऑफ द टू prevailing equations has to change. That is that England have never lost a final in an ICC tournament at home, and they have also never beaten Australia. Australia looking for their 7th title, England for their 2nd. And those of our listeners who remember will know that that came right here on this ground when Anya Shrupsole really was the key difference. Harmanpreet's great innings proving to be not enough, and that was the final they won against India. Well, bright sunshine here on our TV monitors. It seems to be good conditions, as Vinita described. It's a fresh pitch, and England will have to get a above par score, Vinita, because this Australian juggernaut is not going to be stopped by anything short of that.
0: सबके दिमागों में यही बात है प्रकाश की, किस तरह से वेल ऑयल्ड मशीन जिसको कहते हैं, क्या ये खिलाड़ी हैं? और आप देखें कि ऑलराउंडर से भरी हुई है ये ऑस्ट्रेलियाई टीम। एक मैच में तो 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, शायद एक दो ऐसे हैं क्रिकेटर, विकेट कीपर को हटाई दीजिए, बैटर हैं सारे के सारे जो बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो इनके पास इतने विकल्प हैं मैदान पर कि अगर कोई दिन आपका नहीं है, किसी दिन आप नहीं चल पा रहे हैं, तो आपके पास दूसरे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं। दो, जैसा कि मैंने कहा कि दो भारतीय ऑफिशियल्स हैं, उनमें से एक इस समय बॉलिंग वाले छोर पर नजर आ रही हैं, वृंदा राठी, और इसके साथ वो मशहूर वेस्ट इंडीज की अंपायर जो जिनका कि ये 5वां T20 विश्व कप है, जैकलीन विलियम्स, वो शायद स्क्वायर लेग पे अभी नजर आएंगी। तो ये स्थिति है कि जो बहुत ही बढ़िया शानदार जोड़ी है, और वो खिलाड़ी, वो बैटर डैनी व्हाइट हॉज, जिन्होंने कि सबसे अधिक रन बनाए हैं अब तक टूर्नामेंट में, वो पारी की शुरुआत करने के लिए इंग्लैंड की ओर से आ चुके हैं। एमी जोन्स विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, पारी की शुरुआत करेंगे, साथ में 7 पारियों में 89 रन, 125 का स्ट्राइक रेट। तो डैनी व्हाइट हॉज दोनों ही दाएं हाथ के बैटर्स हैं, और दिलचस्प होगा कि एक तो शुरुआत किस ओर से होती है, पेविलियन एंड से या नर्सरी एंड से, दूसरा ये कि क्या होता है। लूसी हैमिल्टन और किम गार्थ की जोड़ी रही है, एक मैच को छोड़कर हर बार इन्होंने ही नई गेंद का इस्तेमाल किया है। 7 मैचों में 5 विकेट लेने वाली लूसी हैमिल्टन, देखिए, और किसको, मैगन शुल्ट्स को बाहर बैठा रखा है इन्होंने। बाएं हाथ से बॉलिंग करती हैं, एक बाएं हाथ के बॉलिंग का विकल्प उनको मिलता है, लेकिन किम गार्थ की शुरुआत होने वाली है उनके ओवर की। 1-6 के बीच का ये पावर प्ले जिसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, ये रही मैच की फाइनल की पहली गेंद। एक स्लिप तैयार है, और जैसी कि आमतौर पर गार्ड करती हैं, उनकी पहली गेंद आउट स्विंगर थी, एक लेंथ पे टप्पा खाकर दाएं हाथ के बैटर को छोड़ती हुई, स्टंप्स के पास से नहीं होकर बल्कि थोड़ी सी जगह थी। लेकिन आजकल बॉलर्स जो हैं पहली ही गेंद पे विकेट खूब ले रहे हैं, पहले इक्का दुक्का कोई होते थे, आजकल ये बड़ी चर्चा का विषय हो गया। सावधानी रखिए, कुछ नहीं, छोड़ दिया उसको विकेट कीपर के लिए। जैकलीन विलियम्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनका 96वां वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल मैच है, गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई, घूमकर पुल करना चाहती थी, अंदरूनी सिरा लगा, फील्डर ने कोशिश बहुत की, सफलता नहीं मिलेगी, और ये शुरुआत हुई खाते की, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: जोन्स के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका था, लगभग 2 ऑफ द बैट के पास से, स्टंप्स और बैटर के बीच में से भाग्य ने साथ दिया, और उस पर 4 रन अवश्य मिले। वेरहम ने भरपूर प्रयास किया उस गेंद को रोकने का। फील्डिंग का देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, फील्डिंग के स्तर एक आसमान छू रहे हैं प्रकाश, और

0: तरह से बाउंड्री लाइन पे किया, वाह क्या दृश्य था। संतुष्ट नहीं है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब तक थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट जरूर नजर आया है, और ये जो स्विंग मूवमेंट है, नर्सरी एंड और पेविलियन एंड दो हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तीसरा अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो चार रन वहाँ पे जो छोटे छोटे विज्ञापन है रोप के ऊपर, उससे छू गई या नहीं छू गई, और अब वो चार रन का इशारा आ रहा है जिससे खाता खुला है और जोन्स के खाते में जोड़ा है, और इंग्लैंड फाइनल्स में चार रन बगैर नुकसान के तीसरी गेंद के लिए।
1: बहादुर, अरे भाई बहादुर, दरवाजा खोलो यार,
2: लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है,
1: क्या मुसीबत है।
2: अरे रीटा तुम क्या बचा है?
3: डार्लिंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
2: हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? और फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
3: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाश देर से उठेगा, शुमेम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है तो बोला साहब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर? मुझे तो डरा दिया उसने।
2: क्या बजा? 9:30। अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
3: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
2: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
3: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ, और 10 बजे से पहले ही रफू चलो।
2: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो, तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
3: मैं सब जानती हूँ, यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके? खूब तमाशा है, देखा मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड। लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटी के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। क्यों?
2: अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है। बहादुर आ गया लगता है। बहादुर, बहादुर
4: आया साहब, आया साहब।
5: ओ मेम साहब, आप भी आ गया।
3: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है?
5: हम साहब वो आज।
3: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
5: सब कुछ बता दिया?
3: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
5: नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा। साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब।
2: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
6: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
2: सलाम सलाम, बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं,
6: नहीं साहब,
2: यहाँ यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
6: अरे नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
2: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
6: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पे बैठ जाओ साहब जी, ये हमारा घरवाली है साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब, ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे मेरी शर्माती रहोगी या साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
3: सलाम साहब।
2: सलाम
3: मैम साहब।
7: सलाम।
3: बहादुर ये तुम्हारी मालकिन है, तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने भी शादी नहीं बनाया।
2: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
6: मेम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
3: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
6: होटल में साहब?
3: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
2: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है, ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
5: मैं अभी लाता हूँ साहब।
3: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
2: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
6: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
2: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं,

0: आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
1: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि शाबिश के माई बाप सब कुछ हैं, पर शाब तो कुछ और ही बोलते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। रीटा,
2: हाँ तो आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
3: अच्छा शाम, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे शाम, दोनों ले लेंगे।
1: चलो आप शाब से शाब शाब बात कर लो।
0: हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है। इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
3: नहीं शाम, नहीं, बहादुर के बारे में तो हम शाब को जानते हैं, सब को जानते हैं। उसका बाप हमारे गांव का है शाब।
0: तो फिर रुकावट किस बात की है? फौरन शादी कर डालिए। और हाँ, बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
1: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं शाब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
0: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
1: ना, ना, ना,
0: इसमें हर्ज ही क्या है? शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
3: अरे क्या बोलता है शाब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था शाम।
0: वो तो नजर आ ही रहा।
3: क्या मतलब शाम?
0: नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
3: कुछ अदला बदला नहीं शाम, कुछ अदला बदला नहीं। दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया शाम। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है शाम। हाँ। कोई नुकश नहीं। हाँ, घर का सब काम का जानती है, खेती में काम करती है शाम, घर का चूल्हा चक्की।
0: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए, शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
3: शादी की बात भी हो जाएगा शाब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए शाब।
0: हाँ हाँ, क्या बात है?
3: तुम्हारी बात का शाब।
0: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
3: नहीं शाब, नहीं, बात ये शाब के, बात ये के
1: मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है? अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो शाब को, शाब शाब शाब बात कर दो।
3: चल तू बोल दे शाब शाब।
0: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
3: नहीं शाब, नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थूक दें शाब। हाँ, ये फैसला तो आपको करना है शाब।
0: मुझको?
3: जी
0: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
1: शाब? आप शादी कब करेंगे?
0: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था, ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
3: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा शाब।
0: मेरी शादी? क्या मतलब?
3: मतलब ये शाब कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफी की हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
0: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं। मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहां करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
1: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को शाब बोल दो, शाब का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
3: ठीक कहती है तू, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा शाब, माफी देना शाब, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया शाब। चल लक्ष्मी।
4: क्या बात है शाब, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
0: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
2: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
3: बात ये मेम साहब के मेरा
1: तो पीछे हटो, मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम्हें बोलो तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब, हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
2: बिल्कुल ठीक।
0: रीटा तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो? किस्सा मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले, फिर बहादुर की शादी हो।
2: ये भी ठीक।
0: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
2: कभी नहीं हो सकता।
0: क्या नहीं हो सकता?
2: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
0: ये कोई जबरदस्ती है?
3: चलो लक्ष्मी। सलाम मैम साहब। सलाम साहब।
0: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए, आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
5: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
3: थैंक यू साहब, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं साहब। अच्छा बहादुर, शादी जब साहब का हो जाए तो हमको खबर देना।
2: अच्छा खबर नहीं, बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
3: जरूर आएंगे मैम साहब, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम साहब। सलाम मैम साहब।
2: सलाम
3: साहब।
2: सलाम
3: मैम साहब।
0: बहादुर इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ो।
4: हाँ साहब, जाते हैं साहब।
5: Oh darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
0: Good idea. मैं बस गया और आया।

0: भीम छाप जी,
1: छाप किधर गया?
2: अंदर कमरे में तैयार होने।
1: अच्छा,
2: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
1: ये सब तो मैंने आपके लिए किया भीम छाप।
2: हाँ,
1: हम साहब को रोज रोज समझाता था, साहब शादी कर लो, साहब शादी कर लो, पर अपनी कभी सुनता ही नहीं था साहब, तो इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मेम साहब?
2: अरे ठीक नहीं, हिट था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
1: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ, अपने मुल्क से बुलाया इनको।
2: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
1: और नहीं नहीं नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था।
2: हाँ,
1: हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। हाँ, तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
2: क्या बात है, वाह बहादुर वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो। हाँ,
1: थैंक यू मेम साहब।

बहादुर की शादी, हरी मेहरा की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीतम का।

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला गीत बैड बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार

अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और

0: गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट

0: दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नौसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस

0: यूके एमटीओ ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।

फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत जयदेव का है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है कालीचरण, गीत इंद्रजीत सिंह तुलसिया का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अदालत फिल्म का गाना। गीत गुलशन वावरा ने लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर, इलारुन और साथियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिव हरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसकी अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: की प्रधानकारी का बाज केंद्रित था। निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है, और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया के धोखे।

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलोजान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम।
1: आपके पहलू में आकर रो दिए आपके।
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हमराही हसर जयपुरी, शंकर जयकिशन। मेरी हमदम मेरे दोस्त, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: जयंत जी,
0: जी
1: आज की विविधा का आरंभ, मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का।
0: वाह।
1: एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते, आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया।
1: जी
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी जी
0: रहे
1: जी
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।

0: ने अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है, तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
1: निश्चय ही बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी। तत्सम शब्द होते हैं,
0: हाँ।
1: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
0: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है। आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नौरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मनपसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता।

मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप, राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है, इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: क्षमा मैं भूल हूँ, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए जी, तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर हाँ। बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार
0: हाँ।
1: और इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है असल में, फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात की है।
1: शायद इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी, एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की
1: जी,
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशोरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
0: जी,
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया, बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी फिल्म के लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे
1: जी। 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत, और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्ड सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए

0: पता।
1: हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी
3: जी,
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात,